0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिस अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फुलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फुलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत शकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ अरब औरतों का, अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तस्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी, और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ, उसकी लेंथ कितनी हो। यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। वो लेंथ बताई थी, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, वो चलती जा रही है और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लफ्ज, कि वो इस एरिए को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजूकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है, गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबुउलतिहिन्न।

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki. Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

यूज करते थे, और इसी तरह कहा जाता है शायद कंस्ट्रक्शन के भी किसी काम में आता था, यानी उस जमाने में वो घास काफी यूज होता था। तो ये वो घास काट काट के लाते थे और मदीना मुनव्वरा में बेच के अपने ख्याल में तो वो शादी का खर्चा जमा कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इनके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर पूछे इनके ऊंट को ज़बह किया और दावत कर ली, कबाब बना के खा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा कोई और चीज है? हाँ एक जरा है। फरमाया ठीक है उसको बेच दो। उसको बेचा गया और वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 480 दिरहम ने खरीद ली। इस रकम से वलीमे का सामान खरीदा गया, यानी खाना पीना और खुशबू। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ये वलीमे का खाना अपने जमाने का बेहतरीन वलीमा था। उसमें क्या था? जौ की रोटी, गोश्त का एक खास किस्म का सालन जो अरबों के यहाँ पकता था, और खजूर से एक खास तरीके का मीठा बनाया जाता था, और पनीर। वो कहते हैं बेहतरीन खाना था उस वक्त वलीमे का। एक अंसारी ने अपना एक घर दे दिया और इस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुल्हन बन के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर तशरीफ लाए, एक बेहतरीन वफा शौहर बीवी की हैसियत में। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत शक्ल मिलती थी, चाल ढाल बहुत मिलती थी, और रिवायत है कि जब उनकी रुख्सती होगी तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके घर तशरीफ लाए, पानी मंगा के वजू फरमाया, दुआ फरमाई दोनों के लिए, और फिर वो पानी दोनों पे थोड़ा थोड़ा छिड़क के दोनों के लिए खुशी और बरकत की दुआ फरमाई। और एक रिवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि मैंने अपने खानदान के बेहतरीन इंसान से तुम्हारी शादी की। बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी एक तरह से मुंह बोले बेटे की हैसियत से उनके घर में पले थे, और इसलिए भी बहुत मोहब्बत करते थे कि आपकी बाकी बेटियां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही यके बाद दिगरे फौत हो गई। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा भी जो बड़ी बेटी थी, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बदर के मौके पे जब मुसलमान आ रहे थे 2 हिजरी में वो इंतकाल फरमा गई, फिर हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो मुख्तलिफ रिवायात हैं, बड़ी प्यारी बुखारी में अगर आप पढ़ें, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इनके घर तशरीफ लाए दोनों के पास, तो कहते हैं कि हम दोनों लेट चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने नहीं दिया, हमारे पास ही बैठ के, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक मेरे साथ लगे हुए थे, और कहते हैं आज भी मैं उनकी ठंडक अपने दिल में उतरते हुए महसूस कर रहा हूं। दोनों की जिंदगी बड़ी प्यारी जिंदगी है, मोहब्बत भी है, एक दूसरे का दुख सुख भी बांटते हैं, मुश्किल वक्त में भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक साबिर और शाकिर बीवी हैं। लेकिन मियां बीवी में कुछ न कुछ ऊंच नीच तो हो ही जाती है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछे फातिमा चचा जाद भाई कहाँ है? हजरत अली के बारे में पूछा, कहने लगे मुझसे कुछ नाराज होकर चले गए, घर में नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि मस्जिद नबी में आराम से सो रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और जिस्म मुबारक से चादर सरक गई और मट्टी जो थी वो उनके जिस्म को लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मोहब्बत से उनके पास बैठे और कहा उठो या अबा तराब, तराब कहते मिट्टी को, ए मट्टी के बाप उठो, यानी मट्टी उनके ऊपर लगी थी। तो एक मोहब्बत का प्यार भरा लफ्ज था जो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत पसंद था, और अगर कोई उनको इस लकब से पुकारता तो बहुत खुश होते थे, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थे। और उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी समझाया कि देखो बेटी, कौन शोहर ऐसा चुपचाप घर चला आता, यानी तुम्हारे शोहर की अजमत नाराजगी के बावजूद अगर घर आ गए तो अब तुम भी बात को जाने दो। इसी तरह एक वाक्य आता है कि इनके घर में बहुत तंगी रहती थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत मजदूरी करते थे, और कहते हैं इतनी सादगी थी उनकी तबीयत में कि कभी देखा जा रहा है उनको कि उजरत के लिए मट्टी भी खोद रहे हैं, कभी कुएं से पानी निकाल निकाल के किसी के बाग को सींच रहे हैं। रिवायात में आता है कि कहते हैं मैंने 16 डोल एक औरत के लिए खींचे उजरत पे, और वो पानी से अपने मिट्टी के ढेलों को भिगो रही थी। जब मैंने 16 डोल खींच लिए

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मालूमात के हवाले से प्रोग्राम होता है, लोकल हमारा ये प्रोग्राम है, कम्युनिटी में जो कुछ होता है उसके बारे में हम अपनी राय मेहमानों से लेकर आपके सामने रखते हैं। तो इस वक्त आपकी आवाज के थिंक टैंक सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं, तजर्बाकार हैं, सियासत को समझते हैं, कम्यून्स को समझते हैं, पार्लियामेंट को समझते हैं, कानून कायदे की बात करते हैं और टैक्सी ब्रांच में साला साल से इनका तजर्बा है। बहुत सारे इस ब्रांच में इनके शागिर्द भी हैं जो आजकल बड़े बड़े वॉन मैन बने हुए हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से अच्छा काम कर रहा है। और जो ख़बरें आपके साथ ये शेयर करते हैं या जो इनकी मालूमात होती हैं जहाँ से ये स्टडी करके आपके साथ शेयर करते हैं, तो समझना आप ख़ुद भी तहकीक किया करें। ना ही कभी इनका दावा रहा है कि आप ये तहकीक ना करें, ना ही इन्होंने कभी कहा है कि आप सर्च ना करें। तो लिहाजा सीखना सिखाना एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इंसानियत की बात भी है, सीखना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब। शाह साहब एक बार फिर आपको अपनी टीम के साथ खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टनर और नाज़रीन सबको सलाम अलैकुम, और पूरी उम्मत मुसलमान और पूरी उम्मत जो है दुनिया में रहती है सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ये मुख्तलिफ डेट्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, 12 रबी अव्वल से लेके 17 रबी अव्वल तक, और बाद जो है वो इसके बाद भी मिलाद मनाते रहते हैं, घरों में मिलाद होते हैं, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, और हर जगह जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं, और मनाए लोग जो है वो मुख्तलिफ फिरकों से तलक रखते हैं और उनके अपने ख्याल के मुताबिक, उनकी अपनी आजादी के मुताबिक वो जिस दिन को चाहें, क्योंकि ये पूरा माह जो है रबी अव्वल का, ये हमारे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, तो यहाँ पे लोग जो है बड़ी खुशी मनाते हैं। तो आज भी एक जो काफी मुसलमान जो है आज भी 17 को ईद मिलाद मना रहे हैं, कुछ कल मना रहे हैं, कुछ आगे जाके मनाएंगे, तो हम उन सबको मुबारकबाद देते हैं और अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में हमसे जो कबीरा सगीरा गुनाह हुए हैं वो माफ करे, और हमारे जो साथी और माए बहने और बच्चे जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी ज्वार रहमत में जगह अता फरमाए, और ये सबके लिए दुआ है, और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है, बेहतर करने वाला है। राजा साहब, आज मौसम जो है वो थोड़ा सा सर्द है, इतना भी सर्द नहीं, लेकिन 18 19 20 तक डिग्री तक गर्मी है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, शाम को भी काफी बारिश हुई, कल कहीं कहीं बारिश बादल आ जाते हैं, टुकड़ियां आ जाती है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, लेकिन अब ऐसा मौसम शुरू हो रहा है जो जिसको हम अपनी पंजाबी जबान में पतझड़ का मौसम कहते हैं। ये पतझड़ का मौसम जो है ये सितंबर में शुरू होता है और अक्टूबर तक जाता है, और ये जो मौसम है इसके अंदर जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं, इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर भी उल्विकलिंग होती है, यानी कि हमारे अंदर भी जो जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, यानी कि हमारे जितने भी जोड़ हैं उनके अंदर जो रेशे होते हैं उनकी तब्दीली आती है, जिस्म में तब्दीली आती है, और बकायदा बाज लोगों को खांसी लग जाती है, बाज को रेशे की बीमारी हो जाती है, जुकाम की बीमारी हो जाती है, लेकिन ये बीमारियां नहीं, ये वो जरसूम है और वो चीजें हैं जो बाहर निकलती हैं, जो इंसान के अंदर जमा होगी होती है, और ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हकीकत है कि जो लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन खा कर या इंजेक्शन लगवा कर

0: अपने अंदर इन चीजों को जमा कर लेते हैं। और ये सुनने और देखने में सुनने में आया है कि जो एक्सपर्टीज हैं वो ये कहते हैं कि ये कैंसर का भी सबब बनते हैं। लिहाजा जो कुदरत की तरफ से जो पतझड़ आपके जिस्म में आया है उसको बाहर निकलने से मत रोकिएगा। हाँ, अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर जो है वो मशवरा करें और जो मेडिसिन डॉक्टर लिख के दे उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इतने भी कम कपड़े ना पहने और खसूसी तौर पे गाड़ी का जो टेम्परेचर है, एयर कंडीशन है, उसकी देखभाल जरूर करें। और बाहर के जो इस वक्त पतझड़ के जमाने में अगर आप किसी साइड स्ट्रीट में जा रहे हैं, किसी जंगल से गुजर हो रहा है और हल्की हल्की बारिश है या कुछ, तो आप जो सड़क का माहौल है उसको जरूर देखें, क्योंकि पत्ते जो होते हैं जब ये सड़क पे गिर जाते हैं तो ये बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक स्लिपरी होते हैं और यहाँ पे ब्रेकें जो है वो बाद औकात काम नहीं करती। तो लिहाजा आपको बड़ा एहतियात करनी चाहिए। अगर आप 60 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो 50-55 पे जाएं, ताकि ब्रेकें जो है वो गाड़ी जो है वो अपने वजन के हिसाब से ब्रेकों को कंट्रोल कर सके। तो ये चीजें देखने की है। जी राजा साहब, आपका कोई सवाल?
1: शाह साहब, आप मालूमात की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, ज़रा पहले ले लेते हैं। शाह साहब, आपने ज़िक्र किया ईद मिलादुन्नबी का, तो बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जारी रहेंगे, सितंबर में भी लोगों ने डेटें दी हुई हैं, हमसे भी रबता होता रहता है, जाने का मौका भी मिलता है, सुनने का मौका भी मिलता है। कल बड़ी हमने इल्मी गुफ्तगू सुनी मक्की मदनी मस्जिद में, जो है मदनी मिस्टर कल्चरल इंस्टीट्यूट में, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, हाउसफुल प्रोग्राम था, बड़ी इल्मी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। इसी तरह और दूसरे उलमा भी बात करते रहते हैं, जहाँ जहाँ किसी सेंटर में ये इल्मी गुफ्तगू होती है, सुनने का मौका अगर मिलता है या किसी को भी मिलता है, तो शाह साहब एक बात सामने आती है कि सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, आशिक रसूल हैं, लेकिन शाह साहब जिस कुरान पाक का जिक्र करते हैं, जो उनकी तारीफ़ में हम बातें करते हैं या उलमा बात करते हैं, सुन्नी करते हैं, शिया करते हैं, सुन्नी फ़िरके के फ़िरके तो आपको पता है बने हुए बना लेते हैं, तो शाह साहब उसमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो फरमाया, जो उलमा फरमाते हैं, तो शाह साहब उस पर अमल करने की तरफ कोई जाता नहीं है, क्या वजह है?
0: अमल जो है, इसकी हदायत जो है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही हम लोगों को बता दी थी कि आने वाले सदियों में आने वाले जगह पे आपको मुख्तलिफ किताबें पढ़ाई जाएंगी, आपको मुख्तलिफ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको गलत, मुझसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे उसको आपको गलत हदीसें बताएंगे और काफी बातें करेंगे। इससे ये बात होगी है कि हर बंदा जो है वो ये समझता है कि मैं चंद दिनों के लिए, अगर मैंने कोई ऐसा क्राइम कर लिया, ऐसा जुर्म मैंने कर लिया है, तो वो मैं चंद दिनों के लिए जहन्नम में जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे वहां से निकाल लिया जाएगा और मैं वापस जन्नत में चला जाऊंगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफात करेंगे। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद जो है इसकी बिल्कुल अपोजिट निशानदेही करता है। कुरान ये कहता है कि तुम वैसी किताबें ना बनाओ जैसे ईसाइयों ने बनाई, यहूदियों ने बनाई और अपने मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स आपने फिरकों में आप बट के, तो इस चीज पे सूरह अल-बकरा को आप शुरू करें तो वहां पे आपको सबसे पहले ये चीज यही मिलेगी जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो सितारा शनास हैं, ये जो उलमा है जो मेरे आयात को पढ़ पढ़ कर बेचते हैं और ये जो उनसे कमाई करते हैं और इसी तरीके से ये सब फिरकों में है, ये किसी एक फिरके में ही है, सब स्कूल ऑफ थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ और ये कुरान मजीद में लिखा है और इसी तरह वहां पे लिखा गया है कि पहले जो फिरके थे उनमें क्या गलतियां पाई जाती थी, वो किस तरीके से, वो भी मुसलमान थे लेकिन वो किस तरीके से बदल गए, किस तरीके से उन्होंने अपने मुख्तलिफ फिरकों को अपने ऊपर मसलत कर लिया और किस तरीके से वो अपने दीनों से हट गए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो हर दफा है वो बिल्कुल अपने नबी को मानते थे, अपने रसूल को मानते थे और वो उनकी किताब को मजबूती से पकड़ रखे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो बिशारत की है कुरान मजीद के अंदर निशानदेही की है कि वो जन्नत के जन्नत में जाएंगे और बाकी सबको मैं दोजख का जहन्नम का ईंधन
1: तो
0: बनाऊंगा।
1: शाह साहब,
0: अब हम
1: इससे
0: ये सुन
1: साबित होता है कि जो अल्लाह ताला की या इलामी किताबें हैं, अल्लाह पाक की किताबें हैं, तो जो जो उतरी, जिन जिन रसूलों पर उतरी, तो उनका जो असली मकसद था वो सबको स्टडी होना चाहिए। एक ही अल्लाह है तो अल्लाह की तरफ सारे रजू करते हैं। तो शाह साहब, ये तो इल्मी गुफ्तगू की बात हो रही थी, ये तो बहुत बड़े बड़े उलमा ही बात कर सकते हैं, हम तो निशानदेही कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं जवाब सुनने के लिए। तो शाह साहब, मौसम का आपने जिक्र किया, बीमारियों का अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं, आप भी बताते रहते हैं, टैक्सी ब्रांच का जिक्र किया, क्योंकि ये हमारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह 5 बजे घरों से निकल जाते हैं और शाम तक ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। शाह साहब, अगर सड़क पर हम जब देखते हैं तो ट्रैफिक का ये हाल है कि आप 15-15 मिनट जो है एक चौक में खड़े रहते हैं, इसी तरह मोटरवे पे भी जी काफ़ी देर छुट्टी के टाइम जो है लंबी लाइनें, मीलों लंबी लाइनें नज़र आती हैं, कच्चे की तरह गाड़ियां मोटरवे पे भी चल रही होती है। तो शाह साहब, कम्यून जो होती है, कोपेनहेगन कम्यून की पार्लियामेंट है, इसी तरह कोपेनहेगन की जो कम्यून को, इसको पार्लियामेंट के मेंबर भी कहा जाता है, कोपेनहेगन की होती है, तो दूसरी कम्यूनों को शायद ये एजाज़ नहीं मिलता, बाकी भी सारी पार्लियामेंट बनी हुई है। तो शाह साहब, सारी चीज़ें होने के बावजूद जो हमारे सिटी काउंसिल जो भी आते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप लोगों के पास टाइम है या नहीं है। तो शौक से तो हम आ जाते हैं और इस पर वोट भी ले लेते हैं, मामा चाचा करके, ताया भतीजा करके, भाईजान करके, अंकल करके, तो वोट भी हमें मिल जाते हैं। तो शाह साहब, सिटी काउंसिल की होती ड्यूटी होती है, इसी तरह रीजन के मेंबर होते हैं, बड़ा बहुत बड़ा काम होता है, पढ़ा लिखा काम होता है, बाकी कमेटियों का भी काम होता है। तो शाह साहब, जब ये सारी चीज़ें पहले पता होती हैं, तो जब ये सारे लोग बन जाते हैं, तो फिर हमारे लोग जो है बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ भी 10 बंदे इकट्ठे कर, 2 बंदे इकट्ठे होते हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। तो शाह साहब, ये आने से पहले सोचना चाहिए या बाद में सोचना चाहिए?
0: जी, आपने एक बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही सख्त किस्म का सवाल किया है। ये बिल्कुल सही बात आपने की है कि पहले सवाल किया जाना चाहिए या बाद में। ये तो पहले सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो बंदा इस काबिल है कि वो एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसके जिसकी उसकी मादरी जबान जो है वो उसकी अपनी नहीं, उसकी सेकंड जबान है। हमें ये सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम जितने भी फॉरनर्स हैं, हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो डेनिश है। बेशक हम यहाँ स्कूलों में जाते हैं, बेशक हम डेनिश बोलते हैं, लेकिन असली तौर पे हमारी मदर टंग वही है जो हमारे माँ बाप की है, जो हम घरों में पढ़ते हैं, जिसको हम ज़हनी तौर पे हम कबूल करते हैं, वो हमारी असल जबान है, वो नंबर वन जबान होती है। तो ये जो दो जबानों वाला मसला है, इसको भी हल करने के लिए सियासतदानों को सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हमारे जो सियासतदान है वो ये नहीं समझ सके अभी तक कि जो आइन है, डेनमार्क का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी तारीफ क्या है, उसके कानून क्या है, वो क्या कह रहा है। लेकिन जो कानून पार्लियामेंट बना रही है, तो हम यही समझते हैं कि ये आइन का हिस्सा है या आइन का एक जैली हिस्सा है। तो ये गलत चीज है। हम फौसले जब देते हैं, जब हम किसी चीज पर बात करते हैं, एग्जाम्पल आपने कोपेनहेगन का की बात की, तो कोपेनहेगन एक बड़ी सबसे बड़ा हमारा दारुल खिलाफा है और यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्स भी हैं, सब कुछ है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ के जो कोपेनहेगन की जो कम्यून है, उसका फ्राइज जो है वो दूसरी कम्यूनों से बहुत बड़े हैं। वहां पे सबसे पहले जो काउंसलर आता है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो कौन से हल्के से किन लोगों ने उसको चुना है, उनकी क्लास क्या है, उनके अंदर कौन से लोग रह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उनको हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, स्कूल्स की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, उनको पैसों की प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं वगैरह वगैरह, ये उसको रखना चाहिए। फिर उसकी एक फोर्स ले बनाकर अपनी पार्टी से, अपनी बॉल एस जो उसकी पार्टी का जिस हल्के से वो इलेक्ट हुआ है, उनसे बात करके अपनी पार्टी में उसको मंजूर कराकर उसको ये चीजें आगे पेश करनी चाहिए, और उसके लिए दूसरी पार्टियों के लिए जो दूसरी पार्टियां वहां बैठी हुई हैं जो बिल्कुल उसकी मुखालफत करेगी कि ये कहाँ से ले आए इस किस्म की फौसले, तो उसको आयन को समझना चाहिए और वो आयन को बेस बनाकर उनको एक शट अप कॉल दे सकता है, उनको कह सकता है कि हमारा आयन क्या कह रहा है और आप क्या बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो अपने लोगों की प्रेजेंटेशन पेश करेगा, इस तरीके से उसके पांव मजबूत हो जाएंगे और वो अपनी बात जो है वो समझाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप तनकीद बनाए तनकीद करना शुरू कर गए, बहस पे ऊपर बहस करना शुरू कर देंगे, उस बहस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उनको समझा सकें, तो वो बिल्कुल होगी। अब आपने जैसे बात की टैक्सियों की पार्किंग की, तो कोपेनहेगन में सबसे बड़ी जो चीज है वो है वहां पे मेजोरिटी जो लोग रहते हैं वो है वर्कर, और उनमें ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, उनमें टैक्सी ड्राइवर भी हैं, बस ड्राइवर्स भी हैं, और बहुत सारे हैंड वर्कर जिनको हम कहते हैं मसलन हाथ से काम करने वाले मुस्लिम मजदूर और लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में अपनी वाहनों में वो सफर करते हैं, उनके लिए पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, सड़कों की भी प्रॉब्लम है, उनके उनके काम करने के औकात में जब वो जाते हैं मुख्तलि वक्त में वो ट्रेवल करते हैं तो उनको बड़ी दुश्वारी होती है कि वो राइट टाइम पे जो है वो किसी अपने एक मकाम पर पहुंच के वहां काम शुरू कर सके, और अगर वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पे उनको पार्किंग मिलनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीजें जो है, तो इसके लिए जो काउंसलर हजरात हैं उनको चाहिए कि ऐसे वर्कर्स जैसे पुराने वक्तों में होता था कि जो वर्कर जो ऐसे किस्म के जैसे वीवीएस वर्कर है जिसके लिए कि बहुत जरूरी है, आपका बाथरूम खराब हो जाता है, टॉयलेट खराब, कोई चीज ऐसी हो जाती है, वीवीएस को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, आपके कोई विंडो टूट गया शीशे वाले को बुलाते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल चिलैल से इजाजतनामा होना चाहिए ताकि वो जहां अपनी गाड़ी खड़ी करे, अगर वो गलत ऐसी जगह पे पार्क कर दी है जहां पे उसको जुर्माने का खतरा हो तो उसको जुर्माना ना लगाया जाए, क्योंकि वो एक काम करने के लिए आया है, एक मिशन पे आया है और वो अपना काम करके जा रहा है और लोगों को सहूलत देता है, तो गवर्नमेंट इन चीजों पर नहीं सोच रही। गवर्नमेंट ने जो है जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ एक ही रट लगा ली है, ख्वाह वो कम्यून हो या पार्लियामेंट, वो ये कहती है कि हमने यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है कि लोग मायूस हो जाएं, आपस में लड़ना शुरू कर दें, आपस में जो है वो आप देखें जब सड़कों पे आप जाते हैं लोग इतनी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि वो तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको बिल्कुल ये परवाह नहीं होती कि मेरा लाइसेंस चला जाएगा, मेरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, मैं किसी को मार दूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कोई मार देगा थोड़ी सी गलती से, कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचता, बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे होते हैं, फिर वो घर में जाते हैं तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने अगर वो शादीशुदा है तो बीवी बच्चों पे या अपने फैमिली पे निकालते हैं। तो ये चीजें जो है ये समझने के लिए सबसे पहले ये जो छोटी पार्लियामेंट जिसका आपने जिक्र किया है ये कम्यून होती है, और कम्यून का काम है कि वो इन लोगों को बोल है जिसको हम कहते हैं यानी कि सुकून की गोलियां दे, इनके लिए ऐसे प्रोग्राम लेके जाए, ऐसी फोर्स लेके जाए जो इनको अमन के रास्ते पे लेके जाए तो ये खुशहार हो। अगर आप दुनिया भर की जो अखबारें हैं या दुनिया भर की जो मीडिया हैं या जो भी चीज है उसको अगर आप देखें तो उसमें लिखा जाता है कि डेनमार्क दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल मुल्क है, तो इसके इसके अलावा अगर आप देखें तो जो खुशहाल था उसको इन्होंने बदहाल कैसे कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी कोपेनहेगन कम्यून और दूसरी कम्यूनों से निकलती हैं, जहां पे वो सिर्फ अपने लॉबीज के लिए काम करते हैं और वो अपने लोगों के लिए अवाम के लिए काम नहीं करते, वो जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो हमारे हमारे मकसद की चीज नहीं, हम चले जाते हैं। देखिए आप मोस्टली काउंसलर से बात करें जो फॉरनर काउंसलर हैं तो वो ये कहेंगे जी हमें प्लाईएम चाहिए, हमें नमाज के लिए जगह चाहिए, हमें जो है वो जो है थोड़ी सी सहूलतें चाहिए। ये वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी तालीम है, उनको स्कूलों के अंदर ये कानूनों के बाद जब वो तीसरी चौथी या पांचवी क्लास में इस काबिल हो जाते हैं, बच्चे काबिल हो जाते हैं, उनको महीने में एक दफा यहाँ के आईन और यहाँ के कानून के बारे में वहां पे लोगों को दर्श देना चाहिए, उनको उनकी क्लास होनी चाहिए ताकि सब स्कूल वाले बच्चे जो हैं वो ये सुन सकें कि डेनमार्क का कानून क्या है और यहाँ क्या क्या चीजें हैं, और बच्चे उसके ऊपर सवाल कर सके। जैसे कि ये करते हैं कि किसी फंक्शन के ऊपर पुलिस वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले अपनी गाड़ियां लेके चले जाते हैं और बच्चों को अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसी तरह अगर ये कानून के बारे में सियासतदान जाके उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दें, उन मासूम लोगों को बताएं कि आपकी इस गलती से आपकी जिंदगी कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो वो बच्चे जो है वो अल्कोहल भी पीना छोड़ देंगे, वो ये जो अपना कैसीनो टाइप मशीनें लगी हुई है इनको खेलना छोड़ देंगे, रात को जो बाहर जाके वो 6-7 बजे के बाद वो प्रॉब्लम खड़ी करनी शुरू करती है, मेन स्टेशनों में चले जाते हैं, सेंटरों में चले जाते हैं और ग्रुप की शक्ल में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ये घरों में बैठ के अपने आप को चलने की बकायदा एक तरबियत होनी चाहिए। जैसे कि अभी पूरे यूरोप के अंदर है कि बच्चा जो है आप 15 साल से छोटी उम्र के बच्चों को किसी सूरत भी आप मोबाइल ना दें, इंटरनेट ना दें। हमारे लोग जो हैं घरों में चले जाएं तो वहां पे इंटरनेट ही इंटरनेट लगा होता है, टीवी लगा होता है, कार्टून्स लगे होते हैं, उससे बच्चा जो है वो खेलने से बाहर जाके मैदान में खेलने से बजाय अपने दोस्तों के साथ बात करने की बजाय वो उसी तरह अग्रेसिव हो जाता है जैसे कि वो एक कार्टून को देख रहा है या दूसरी चीजों को। तो जी राजा साहब,
1: शाह साहब आपने काफ़ी तफसील से बताया, सारी चीज़ों का अहाता किया। शाह साहब बहुत सारी सोसाइटियाँ बन जाती हैं, कमेटियाँ बन जाती हैं, सियासी जमातें बन जाती हैं, मजहबी अदारे बन जाते हैं, मसाजिद बन जाती हैं, तो शाह साहब लोग हर जगह डिवाइड हो जाते हैं। कभी कोई कहता है जी फलां जो मजहबी अदारा है उसकी मालकियत किसके पास है, लगता है कि वो सारे कहते हैं ये आवाम के हैं, ये सब लोगों के, सब लोगों का चंदा है। लोग कहते हैं जी महसूस होता है कि पता चलता है कि किसी फराम बरदरी की हुकूमत है इसमें, किसी फराम बरदरी की हुकूमत है। ज़ाहिर है हर सिस्टम को जो है वो कमेटियाँ ही शाह साहब चलाती हैं। डेनमार्क का तो सिस्टम यही कहता है, कानून कायदा यही कहता है कि यहाँ सिस्टम से और कमेटियों से ही जो है वो सारा सिस्टम चलता है। लेकिन जो बाहर चंदा या वोट देने वाले बाहर आते हैं तो सारी जो अवाम जो है उसकी मेम्बर होती है, जो पेड मेम्बर होते हैं। असल में वोट डालने के हकदार तो वही होते हैं जो पेड मेम्बर होते हैं, जो क्लेम कर सकते हैं जी मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। लेकिन शाह साहब ये एक जहलीत होती है जो अच्छे काम को भी जी कहना शुरू कर देती है, जी फलाँ ने कब्ज़ा कर लिया, फलाँ ने हुकूमत बना ली, फलाँ बरदरी इस पर काबूज है, तो शाह साहब ये भी एक जहलीत की निशानी है। जो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, शाह साहब क्या मेम्बर बन के ही खिदमत की जा सकती है? मेम्बर बने बगैर भी तो खिदमत की जा सकती है। उसके अलावा शाह साहब सियासत की जब आप बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, तो हमारे जो कानून कायदे बनते हैं वो तो कम्यून के अंदर बनते हैं, ऊपर जो पार्लियामेंट जो है जिसे फलके सिंह कहते हैं वो तो कानून की जो है वो डिबेट्स होती हैं, जब कानून तय आ जाते हैं तो फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं कम्यूनों में जाकर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो शाह साहब हम कोई सियासी इतजाज भी हमारे लोग नहीं करते, क्रिटिसाइज सिर्फ करना चाहते हैं, करना जानते हैं, जगह जगह आपको सड़कों पर सुराख मिलेंगे। शाह साहब ये वो मुल्क है, इसका बेसिक जो समझ आ रही है हमारा ये मुल्क जो है कि टैक्स होगा तो ये सहूलियात मिलेंगी, अस्पतालों में सहूलियात मिलती हैं, ये में यल्पा की सहूलियात मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट की जो मजदूरों की है उसकी सहूलियात मिलती है, और भी बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, ये सारा टैक्स से निज़ाम चलता है। अस्पतालों के अखराजात होते हैं तो इनकम जो होती है जो जो कहते हैं ज़र मुबादला होता है तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं टैक्स और बात पे। शाह साहब ये निज़ाम में आसानियाँ किस तरह पैदा की जाए? ये वही निज़ाम था जब आप लोग आए थे शुरू में, उस वक्त बहुत आसानियाँ थी, अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है तो, लेकिन अब सख्तियाँ ज़्यादा। जी शाह साहब,
0: जी आपने बिल्कुल राजा साहब दो सवाल किए हैं और दोनों के जवाब जो हैं वो ये है कि जब आप एक मस्जिद की या एक नमाज वाली जगह की आप बुनियाद रखते हैं तो वो अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह के घर के अंदर जो है सफाई रखना जो है वो हर मुसलमान का फर्ज है। वहां वो किसी भी फिरके से तलक रखता हो, किसी भी जमात से तलक रखता हो, वो आए। हर मुसलमान का फर्ज है कि अल्लाह के घर को जो है उसमें ये कोई नहीं कि ये चौधरी है, ये शाह है, ये आगे जाके बैठेगा, मुझे पीछे बैठना है, ये फलाना गांव में इतनी इसकी हैसियत नहीं, ये हमसे आगे कैसे बैठ गया है, इसने मसल्ला खरीदा हुआ है, ये इसके मसल्ले का नाम लिखा हुआ है, ये देखने में आता है। तो ये चीजें जो है अल्लाह के घर में नहीं होती, इससे इससे ज़ुआल पजीद होते हैं लोग। और ये कुरान मजीद की और सुन्नत की हदायत है, इसके अंदर आप इसको इसकी वायलेशन नहीं कर सकते। सब लोग जो हैं, हर मस्जिद जो है, ना कोई मक्की मस्जिद है, ना कोई मदनी मस्जिद है, ना ही कोई शिया मस्जिद है, ना कोई मस्जिद, ये सब मस्जिद होने चाहिए अल्लाह के नाम पे। इसमें हर फिरके के बंदे को जब दिल चाहे, जहां जिस वक्त दिल चाहे, वो आकर अल्लाह के नाम की तलावत कर सकता है, कुरान शरीफ पढ़ सकता है, वहां पे अपना अपनी इबादत कर सकता है और अल्लाह के हजूर में। देखिये, बाज़ों का ऐसा होता है कि बाज़ इंसान जो होता है वो थोड़ा सा ना उम्मीद हो जाता है और वो चाहता है कि मैं अल्लाह से रजू करूं और अल्लाह के पास जाऊं। तो मस्जिद को हर वक्त खुला होना चाहिए, वहां पे जाके वो उलमा दीन से बात कर सकता है। और ये जो सवाल जवाब है, इनके जवाब देने जो है जितने भी आलम हैं, मौलवी हैं, उनका उनका फर्ज बनता है कि वो उसको सेटिस्फाई करें। अगर उसके सवालात इतने बुरे भी हैं तो फिर उसके बावजूद भी उसको उसके सवालों के उसको जवाब दिया जाए ताकि वो मुतमिन हो सके। अल्लाह के घर में हर आदमी को वेलकम होना चाहिए और यहाँ पे नहीं। दूसरा सवाल आपने किया, देखिए यहाँ पे हम लोगों में अभी तक 70 से लेके 90 तक जब हम यहाँ थे तो हमें मैं नहीं थी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 2000 तक हमें मैं नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमें मैं आनी शुरू होगी और हमें रेस शुरू होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सरमाया कौन लगा रहा है, शादियां कौन कर रहा है इतनी बड़ी, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, कहाँ गाड़ी करनी है, किसके पास बड़ी गाड़ी है, किसके पास छोटी गाड़ी है, किसी तरीके से भी सरमाया आ रहा है तो उसको आना चाहिए। हमने, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी 15% ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर रहते हुए भी अभी भी हलाल को एक साइड पे करके हराम को तजरीज देते हैं। देखे, हराम जो है वो सिर्फ उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी को इंतहाई खतरा हो। वहां पे आपको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इजाजत दे दी है कि आप अगर आप जिंदगी से हाथ धो बैठे के करीब हैं तो आप भूख से मर रहे हैं, तो आप वहां थोड़ा सा सूअर खा लें, तो वो सिर्फ ये नहीं कि आप अपना पेट भर लें, सिर्फ ये कि आप सरवाइव कर जाए। इसी तरह से शराब या किसी दूसरी चीजें जो अल्लाह ताला ने खून वगैरह हराम किया है तो उससे अगर आपकी सर्वाइवल हो जाती है तो ये उसके लिए है। लेकिन फिर हमारे लोग जो है इसको परमानेंट अगर एक चीज बना लेते हैं जैसे कि दूसरी कौमों ने बनाया तो वो अल्लाह ताला ने मना किया है। अब आपका जो सवाल है उसके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों के पास जिनके पास इल्म है उनको आगे नहीं लाया जाता, उनको बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया जाता है, उनकी उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मसाइल उठ खड़े होते हैं और ऐसे ऐसे मसाइल उठते हैं कि जिसका लोग जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि ये इस जमाने में भी हमारे लोग जो हैं वो नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान तक के जो हैं वो सवाल जवाब करते हैं। और ये इनको इसलिए करते हैं कि इनके पास बुनियादी तालीम नहीं है, सिर्फ कुरान को पढ़ लेना जो है अरबी में उससे आपको समझ नहीं आती, आपको उसकी जो उर्दू जबान है या आपकी जो तुर्की जबान है, किसी भी जबान, जो भी आपकी मादरी जबान है उसके अंदर आप उसको पढ़े तो आपके जो दिमाग है उसको वो हासिल कर लेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हर बंदा जो है वो हिफ्ज़े कुरान नहीं हो सकता, हर आदमी जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर से दूसरी चीजों में नहीं जा सकता। ये चंद एक पासियत लोग होते हैं जिनके पास ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शैतानी इल्म होता है। आप ये देखिएगा कि शैतान के पास इतना ज्यादा इब्लीस के पास इल्म था कि वो सातवें आसमान पे गया था, अल्लाह ताला ने उसको सातवें आसमान पे बुलाया था। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इब्लीस के पास इब्लीस ने कोई अपना इल्म बनाया था, उसके पास जो भी इल्म था वो अल्लाह ने ही उसको अता किया था, जैसा कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया। तो हमें कुरान मजीद से इल्म लेके और सुनते रसूल पे चलते हुए हमें चलना चाहिए। ना कि हम दुनिया की लिखी हुई किताबों को हम पढ़ के तो उनकी
1: तो
0: कहानियों
1: शाह
0: पे
1: साहब
0: हम
1: देखे
0: अमल
1: ना,
0: करें।
1: जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ कोई इस्लामी कानून नहीं है, ये इनका अपना जो आइन है या इनका अपना निज़ाम है, और जिसके बारे में उलमा ने और संजीदा लोगों ने कहा है कि आपको इनकी बात माननी चाहिए, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जहाँ आप रहते हैं उस कानून कायदे का एहतराम करें। तो शाह साहब यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ जो नज़र आता है अगर हम उस पर भी तनकीद करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ को मना भी नहीं है तनकीद करना, लेकिन शाह साहब जमहूरी निज़ाम ही है ना, एक बना हुआ है कि एक के पास 9 वोटें होंगी, एक के पास 8 होंगी, 9 वाला जो है वो जीत जाएगा, चाहे जो कुछ भी हम मर्जी कहते रहें, जो 9 वाला वोट वाला वही जीतेगा। ये है जमहूरियत, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। तो शाह साहब देखें, साल साल से बरतानिया बहुत एडवांस है, बहुत पहले लोग वहाँ आए, यहाँ डेनमार्क में 70, 71, 69 में लोग आए, अब तीसरी चौथी नस्ल जो है वो चल रही है। तो शाह साहब अब निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, बंदे को खुद सीख जाना चाहिए। कल हमने देखा कि लोग कम कहते हैं कि डेमोस्ट्रेशन करना जमहूरी हक है, सियासी हक है, इजाज़त ली जाती है, डेमोस्ट्रेशन की जाती है। बरतानिया की एक खबर चल रही थी जिसमें सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ये लोकल खबर बनती है, पाकिस्तानियों की खबर है, मुसलमानों की खबर है। तो शाह साहब इंग्लैंड जैसे जमहूरी मुल्क में रहते हुए अगर इजाज़त मिली है डेमोस्ट्रेशन करने की, कोई आदमी डेमोस्ट्रेशन कर रहा है उसकी क्लास कितनी होती है, कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले की सोच कितनी है, वो पैसे लेकर डेमोस्ट्रेशन कर रहा है या खुद जमहूरी निज़ाम के लिए हक लेने के लिए कर रहा है। तो कुछ शाह साहब एक सैयद साहब हैं पढ़े लिखे हैं जिनका तल्लक ओवरसीज से है, उसकी वीडियो जो है वो काफ़ी वीडियो पर जो वायरल है, एक बंदा है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो नापसंदीदा शख्सियत है बकौल लोगों के, दूसरी तरफ जो है एक पढ़े लिखे सैयद है जिनका तल्लक जो है ओवरसीज के साथ तल्लक है, और उनकी गालियों की पता नहीं वो असली वीडियो चल रही है या कि बनाई गई है गालियाँ वो दे रहे हैं। तो शाह साहब इन चीज़ों को जब हम बदला ही नहीं चाहते, हम गुलामी से निकला ही नहीं चाहते, 1400 साल पहले हमें गुलामी से आज़ाद कर दिया, हम सोसाइटियों के गुलाम, तंजीमों के गुलाम, सियासी जमातों के गुलाम, अब अपने मुल्क की हुकूमतों के गुलाम, जो हमें पोस्ट देता है हम उसके गुलाम। जी शाह साहब
0: कि आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमें आजाद पैदा किया गया था रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अपने नबुवत का, अपनी नबुवत का नहीं रसालत का, नबी तो वो पदाइशी थे, रसालत का आपने ऐलान किया 40 साल की उम्र के, कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी और रसूल भी हूँ, और रसूल वो होते हैं जो जो जो किताब लेके आते हैं और अल्लाह की किताब, और आपने आखिरत का, तो आपने सबसे पहले दो चीजें खत्म की थी, एक लॉन्डी खत्म की थी और एक गुलाम खत्म किया था। और आपने सबसे पहले, आपको पता है कि जो हमारे हबशी ने जिन्होंने अजान दी थी, मुझे रस्ता फारस भी उनका नाम जेल से एकदम निकल गया, तो उन्होंने ये चीजें जो है अल्लाह के रसूल ने उनको अपने पास से पैसे देकर आजाद कराया था। तो ये कहना कि जी इस्लाम में जी वो बाद में शराबें हराम हुई और बाद में गुलाम जो है वो आस्ता लोगों को इस तरफ मोटिव किया गया और ये चीजें बाद में खत्म हुई, ये जहालत की सबसे बड़ी और ये दुश्मन के साथ मिलावट करने की और मिल जाने की सबसे बड़े सबूत है, जिसके अंदर इन्होंने हर एक चीज वो की जो सिर्फ हम कलमा पढ़ के बाकी हर वो काम कर रहे हैं जो कुरान मजीद के अल्लाह की दी हुई किताब जो हमारा ईमान होना चाहिए, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। आपने अभी बात की, मैं एक मुख्तसर ये चीज बताता हूँ, आपने कहा कि अंग्रेजों ने, इंग्लैंड बड़ा मॉडर्न था, 1942-43 की वॉर के बाद ये बिल्कुल खत्म हो गया था, डिमोलिश हो गया था। इसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात की तायद करेंगे कि इनको लोगों की जरूरत थी, इनकी औरतें बहुत ज्यादा हो गई थी, फाहिशी बढ़ चुकी थी, मर्द बहुत कम थे, जंग में मारे जा चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस वक्त के हिंदुस्तान से इन्होंने शिप भर भर के, आप अभी भी लाइब्रेरी में जाके इनकी खबरें निकाल सकते हैं कि इंग्लैंड में जब वो जहाजों से उतरते थे, ख्वा उनको पंजाबी आती थी, सिंधी आती थी, जो भी जुबान आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको गोरिये पकड़ पकड़ के वेलकम कर रहे थे, तो इनके घरों को इनको बनाया गया, इनके मुल्क को जो है वो तहफ्फुज़ दिया गया, और आज इन्होंने उन्हीं लोगों को लेके तो हमारे मुल्क को जो है इसको गुलाम बना दिया है। अब यह हमारा मुल्क ही वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा दीन जो है फिरकों में बटे हुए हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, इराक में चले जाएं, ईरान में चले जाएं, कतर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको तीन चार फिरके नजर आएंगे। पाकिस्तान वाइल्ड एक ऐसा मुल्क है और इंडिया जहां सबसे ज्यादा फिरके जो हैं वो मुसलमानों में पाए जाते हैं, और ऐसे ऐसे फिरके हैं कि जो एक मस्जिद में भी पूरी नहीं कर सकते। तो मस्जिद के साथ ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। अंग्रेज
1: चीजें डेनमार्क में भी हैं,
0: अब यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल यही सिलसिला यहाँ चल रहा है। यहाँ पे ये जब हम इन लोगों ने हमें लाए थे तो उस वक्त सबसे बेस्ट नेशन जो थी इनके हिसाब से वो मुसलमान थी, क्योंकि 57-58 में यहाँ इन्होंने यहूदियों को इसराइलियों को आबाद करने की कोशिश की थी दूसरे ममालिक से, तो उन्होंने यहाँ पे वही करप्शन के और दूसरे हालात पैदा कर दिए। यहाँ पे हर चीज वगैरह हर एक चीज इनके मुल्क के आईन के खिलाफ चलनी शुरू होगी। तो फिर इन्होंने क्या
1: चीज़
0: किया,
1: का बार बार हम जिक्र भी करते रहते हैं शाह साहब, हम सारी चीज आपको हमें या दूसरों सबको पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करनी गुनाह है, तो शाह साहब ये इल्ज़ाम हम क्यों नहीं देते कि हमें ट्रंप ने कहा कि गीबत किया करो या नतन्याहू ने कहा कि, बाकी सारी चीज़ें हम उठा के उनकी तरफ फेंक देते हैं।
0: इसलिए कि जो जब हम हराम खाते हैं तो हमारे पास इल्म नहीं होता, तो फिर हम मुताज हो जाते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम चले जाते हैं। आप ये देखिए कि आप ये देख रहे, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये कहें, जब आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे कितने मुकर्ररीन आते हैं, कितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, क्या उनसे कोई ऐसी बात जो है कोई ऐसी बात निकलती है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो आगे चले? नहीं, वो वही बात करते हैं जो इन्होंने उनके खिलाफ लिखी हुई किताबों की हो या उनके बारे में या सुनी सुनाई बात करके करते हैं। डेनमार्क के अंदर जो आइन है, अभी तक जो आइन है ये वो आइन है जिसके अंदर इन्होंने 1952 में थोड़ी सी जो है तब्दीली की थी, लेकिन उसके पहले जो आइन है वो उमर लॉ कराता और ये अब तक उसको उमर लॉ कहते हैं। ये मुसलमानों का है, यहाँ पे औरत से लेके बच्चे के पैदा होने से लेके हर जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट की है, और यही जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कानून था और ये इस्लाम का कानून था कि जो स्टेट में रहता होगा, जो हमारे मुल्कों में रहता होगा, उसको गवर्नमेंट जो है वो सारी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट के खजाने जो है मालूम उसके अंदर से पैसा दिया जाएगा। इसीलिए तो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो थी रोम में,
1: क्या बात कर रहे हैं
0: ये, हर चीज जो है ये सोशल सिस्टम है ही इस्लाम का लाया हुआ, ये बिल्कुल गौरव का नहीं ना इनका है। इन्होंने बेशक इनसे डिबेट करके देख लें, इनसे आपको आखिर ये मानेंगे कि हाँ हमने जो मेडिकल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, दूसरी चीजें ये सब हमने इस्लाम से सीखी हैं, क्योंकि देखे आपके कुरान के अंदर हर चीज वो है जो ना पहले थी और ना अब है, अब हर चीज उसके अंदर डिस्कवर है। हजरत आदम से पहले क्या था, हजरत आदम के बाद क्या हुआ, दुनिया कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई, नस्लें कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई। अब जो बंदे ये कहते हैं जी कि हम सब आदम की औलाद है, ये कुरान को नौजबिल्ला कुरान मजीद को जुटलाते हैं। अफ्रीका में जो कौमें बात हुई, मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब मुख्तलिफ किस्म, चाइना, ये मुख्तलिफ किस्म की कौमें जो है ये अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह ने कहा हो जाओ तो होगी। तो अब ये चीजें हैं जो ये बैठ के उलमा दीन जो जो कुरान को
1: ये
0: समझते
1: तो सारी
0: हैं।
1: इल्मी गुफ्तगू है इस पे, तो जिसके पास स्टडी होगी वही इन चीजों की बात को समझेगा या जवाब देगा। तो शाह साहब हमारे पास अभी 5 मिनट 2 मिनट रहते हैं कि ये जो आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन या कम्यून के इलेक्शन, ये तो एक चीज इस्टेब्लिश होगी कि हमारा सारा निज़ाम जो है वो कोपेनहेगन कम्यून में, एल्बर्ट कम्यून या जितनी भी डेनमार्क में कम्यून है वहाँ पड़ा हुआ है। तो जब शाह साहब हम खुद ही इनसे फ़ायदा सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से उठाना नहीं चाहते, हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? शाह साहब हम सिर्फ गिला करने के लिए इस मुल्क में आए हैं?
0: नहीं, आपने सही बात की। इस वक्त तो हमारे दो पाकिस्तानी जो हैं वो मलिक सिकंदर और काशिफ अहमद जो हैं, ये बेशक डेनमार्क में पैदा हुए हैं लेकिन इनके जो रूट्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, और इनको चाहिए कि जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जो इस
1: अच्छा साहब, ये
0: वक्त
1: दोनों
0: मेजर
1: तो अपने
0: प्रॉब्लम
1: सेक अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जो खबरें मिलती रहती हैं।
0: नहीं, वो मैं भी उनको सुनता रहता हूँ, लेकिन बात असल में ये है कि उनको वो चीजें हाईलाइट करनी चाहिए जिनमें डेंचो को भी तकलीफ है और फॉरनर्स को भी तकलीफ है। ये इनको ये नरमी थोड़ी सी पैदा करनी चाहिए। अभी आप आज की बीटी खोल के देख लें तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 34% जो है, 34% जो है, जितने भी यहाँ पे मर्डर्स अटेम्प्ट होते हैं कत्ल के, वो उसके अंदर फॉरनर्स शामिल है। अच्छा, 34, और आप ये कह लें 35 कह लें, तो जो बाकी 65% है वो तो खुद यूरोपियन पीपल है या डेनिश है। तो इनको इतना बड़ा फसाद करना और इतना शोरों गोल करना कि ये जी मुसलमान है, मुसलमान इतना कर रहे हैं, अब ये खुद मान रहे हैं कि 65% जो लोग हैं ये इनके अपने हैं, और उनके ऊपर ये बात करें। इन्होंने यूक्रेन से बंदे यहाँ लाए, 66,000 से जायद जो यंगस्टर यहाँ पे आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, उनमें से मेजोरिटी जो है वो पुलिस ने उनको
1: शाह साहब,
0: रिपोर्ट
1: एक
0: किया,
1: बात
0: पकड़े
1: आपसे
0: जा रहे
1: सवाल
0: हैं।
1: करते हैं, आपने जिक्र कर दिया, तो जो यूक्रेन के शहरी आए हैं यहाँ कर आबाद हुए हैं, तो इससे हमें क्या नुकसान हुआ, हमें क्या फायदा हुआ, या डेनमार्क को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ?
0: देखिए जी, जब क्राइम रेट बढ़ता है तो उसके अंदर फिर फॉरनर फॉरनर ही होता है। वो आपको ये नहीं देखते कि आपके पास डेनिश नेशनल है या आप कौन है या क्या आपका रंग क्या है या कौन सा मजहब है, आप कहाँ से आए हैं। उसके अंदर आप सबको एक ही वो गेहूं की जो चक्की में गेहूं पेसते हैं, उसके अंदर वो जो चीजें शामिल होती हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन कौन पिस रहा है। तो ये चीजें जब बनती हैं तो फिर इसके अंदर कानून को सख्त करने के लिए जब वो फौसले लेके आती है मुख्तलिफ पार्टी, तो उसके साथ हम सब पिसते हैं, जो हमारे अच्छे से अच्छे बच्चे हैं, जैसे माशाल्लाह आपके बेटे डॉक्टर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो पढ़े लिखे बड़े बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, आम आदमी को तो नहीं पता ये क्या काम कर रहा है, जब उसकी शक्ल देखेगा कहेगा ये भी एक क्रिमिनल है दूसरों की तरह। तो ये चीजें जो है हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे इंग्लैंड के अंदर है या फ्रांस के अंदर है या अपना जर्मनी के अंदर है, कि जिस बंदे ने क्राइम किया है सिर्फ उसका नाम उसकी शक्ल दिखाई जाए, ना कि पूरी नेशन को जो है वो बदनाम किया जाए। तो ये फौसले जो है हमें चाहिए कि हमें अपने काउंसलर्स को कहना चाहिए कि ये कोपनहेगन में इसका बिल पेश करें और इनको कहा जाए कि जो बंदा जाती तौर पर क्रिमिनल है उसके ऊपर उसको बनाया जाए, ना कि उसके पूरे खानदान को और पूरे माशरे को इससे रिलेटेड किया जाए। और ये डेनिश आइन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, डेनिश आइन कह रहा है कि इसकी
1: शाह
0: वजह
1: साहब,
0: से
1: आप
0: इसके
1: बिल्कुल क्लोजिंग के पास हैं। शाह साहब, ज़रा अब आपकी तरफ सवाल को मैं लेकर चलता हूँ। आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरों को हकूक लेके देने की बात करते हैं, लेकर जो इसके लिए फाइट भी करते हैं, इसके लिए डिबेट में भी जाते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं, कम्यून में भी जाते हैं, लोकल तंजीमात में भी जाते हैं। तो शाह साहब, आप एक जमात के बानियों में आपका शुमार होता है, आप अपना हक नहीं ले सके। इसी तरह एक बंदा 28 साल या 20 साल एक पार्टी का सदर रहा, वो अपना हकूक नहीं ले सकता। तो ना जमहूरियत की आप बात करते हैं तो ना हकूक की बात करते हैं, दोनों चीज़ें तो आप ये खुद नहीं ले सके।
0: देखिए जी, मैं आपको एक सीधी बात करता हूँ, ये जो मैं रेडियो पे आपको टाइम देता हूँ मैं ये आपकी वजह से देता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि आए मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें, टैक्सियों के बारे में पूछे, कानून के बारे में पूछे, आइन के बारे में पूछे, तो मैं आपको सवाल देता हूँ, मैं उसकी तैयारी भी कर लेता हूँ। जिसकी चीज का मुझे पता नहीं, मैं कंप्यूटर खोल के मैं उसकी तैयारी उसी वक्त कर लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, उसको डेनिश में भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ अपनी उर्दू जबान में, मैं उसमें भी फिर वो। तो राजा साहब, ये चीजें जो हैं इससे आपका जो शक और शुबा होता है वो दूर हो जाता है। तो मैं जो जो अपनी चेयरमैनशिप है वो मैंने खुद इसलिए छोड़ा है कि जहां पे अगर कोई यंगस्टर को लोग कहते हैं जी हमारे यंगस्टर्स आएंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये उसी जमहूरियत का मैं हिस्सा हूँ कि जो 70 से लेके 90 तक, मिडल ऑफ 90s तक जो था यहाँ का माहौल बड़ा अमन पसंद था। तो वो उन्हीं बुजुर्गों के, मेरे साथियों की वजह से था, मेरे कुलीगों की वजह से था। तो अब जो यंगस्टर्स आए हैं, जो यंगस्टर्स ने मैदान यहाँ पे खड़ा किया है, जो कार रेसिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे बुरे बुरे फ्रॉड कर रहे हैं टैक्स के साथ भी और दूसरों का, और रोजाना अखबारों में आया होता है। तो ये हमारे वक्तों में नहीं था, ये चीज चंद एक थे लेकिन वो उनको रिपोर्ट कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब जो जो है सब्जेक्ट ये बढ़ चुका है, तो इसके अंदर अगर किसी ने रिस्पेक्ट करनी होती तो वो मेरी रिस्पेक्ट करते कि भाई ये इतना अरसा से इस कर रहा है, इससे कोई आवाज नहीं उठाई। और जमहूरियत इसी का हिस्सा है कि अगर कोई ग्रुप आप में पैदा हो जाता है तो आप देखें कि जब इमाम हसन के लिए ये सामने आया, नौजबिल्ला मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया कि भाई अब मुसलमानों ने एक फिरके ने जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई है, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे खिलाफत से छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप खलीफा बन जाए, तो जब आप छोड़ेंगे तो खिलाफत फिर मेरे पास आ जाएगी, तो उस मुआहदे को भी कैंसिल कर दिया गया। तो यही अब चीज है कि मैंने उनको कहा कि ठीक है आपने एक ग्रुप बना लिया तो आप इस ग्रुप को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसको भी उनको भी चाहिए कि दूसरों को, मुझे नहीं हर ग्रुप को ये चाहिए कि जो उनके पुराने हैं जो उनके साथ लॉयल रहे हैं जिन्होंने असल में ये ग्रुप का क्रिएट किया है, जैसे आप कम्युनिटी के चेयरमैन है आपको शील्ड दी गई है खुशी का मौका है, इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी चाहिए रिकॉर्ड करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं पैदा करना चाहिए कि जिस वक्त अल्लाह को मंजूर हुआ तो सबको दूसरों को भी मिल जाएंगे हर चीज हो जाएगी। जब आप आवाम में पॉपुलर होते हैं तो फिर खुद ब खुद अम्बेसी को ये पता लग जाता है कि इस बंदे के पांव कहाँ पे और कहाँ ये पॉपुलर है। तो राजा साहब मैं तो यही कहूंगा कि जमहूरियत वो करता है, देखिए आप जमहूरियत का हिस्सा हैं, आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते, कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि आपके रेडियो की आवाज जो है आपकी आवाज जो है ये सारी दुनिया सुनती है, एक कनाडा से लेके न्यूजीलैंड तक लोग इसको इंटरनेट पर सुनते हैं, लोग हर जगह पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं जो सुनने वाला है, इवन आपके कुछ कुलीग थे जो डॉक्टर थे रशिया में और दूसरी जगह पे, वो भी आपके साथ हम कलाम भी हमारे साथ रेडियो पे होते थे, वो भी सुनते थे और सुनते हैं लोग। तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत ये नहीं कि आप चंद एक अपने लोगों को ले लें और उन्हीं को बस बड़ा बनाकर हर चीज आगे रख दें, बेशक उनको किसी बात का इल्म हो या ना हो, वो जमहूरियत ही वो डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत यही है कि आप आवाम
1: तो
0: के साथ,
1: इससे फिर साबित हो गया कभी हम आजाद नहीं है।
0: देखिए हम आजाद जरूर हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वही चाहते हैं कि हम आजाद ना हो और हम गुलामों की जिंदगी गुजारे, लेकिन वो जैसे वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है, तो इंसान को उसको उस पर भी अमल
1: तो
0: करना
1: शाह
0: चाहिए।
1: साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, काफी लंबा टाइम शाह साहब आपने दिया, आपका कीमती टाइम होता है, बाकी लोगों ने आपसे दम दरूद भी कराना होता है मुफ्त में, जैसे पता है शाह साहब ये दुआ भी मुफ्त में मिले ना तो वो लोग फिर लाइनों में लग जाते हैं।
0: जी देखिए सब कुछ अल्लाह देने वाला है, सिर्फ आपकी नीयत सही हो तो अल्लाह ताला हर चीज पे आपको कामयाब करता है। तो मेरी सबके लिए ये दुआ है, मैं आखिर में यही कहूंगा कि मिलाद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है, कुरान मजीद को पढ़े, अपनी जबान में पढ़े, समझे, गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन लगा लें, पढ़े नमाज, अगर आप एक वक्त नहीं पढ़ सकते तो उसको मजबूरी वक्त है तो आप उनको इकट्ठी कर लें, इकट्ठी करके घर जाके पढ़ लें, मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाके पढ़ लें, लेकिन फसाद पैदा ना करें, गबियत ना करें, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ी सजा जो है वो तीन चीजों की है, एक तलाक, एक गबियत करने वाली और एक किसी का कत्ल करना। तो लिहाजा इन चीजों से जो है हमें परहेज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो आप दिल में किसी को कत्ल करने का सोच रहे हैं तो उसकी भी वही सजा है, क्योंकि आपकी नीयत को अल्लाह ताला बेहतर तरीके से समझता है।
1: सामाईन नाजरीन ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, इनको आप सुन रहे थे। सामाईन नाजरीन हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, कोई भी साहब कोई भी हमारा लिसनर बात करना चाहता है जवाब देना चाहता है उसके लिए अदर आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है,
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: में 89 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम बराए रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज की खबरें लेकर, आज की ताज़ा तरीन मुल्की हालात लेकर आपके साथ हैं। हमारे साथ हमारे थिंक टैंक से ये तुकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, इस वक्त हमारे साथ बराए रास्त मौजूद हैं। शाह साहब, एक बार फिर आपको आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये माह रबी अव्वल है और मिलाद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, सबको मुबारक हो। जी राजा साहब,
1: खैर मुबारक। शाह साहब, इसके प्रोग्राम हो चुके हैं, सारी मसाजिद में हो रहे हैं, सब अदारों में हो रहे हैं, ये प्रोग्राम हो चुके हैं, अभी भी जारी और सारी हैं। इसके अलावा शाह साहब, अब बजट की बातें जो हैं कम्यून्स में की जा रही हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है?
2: देखिए जी, इस वक्त जो अपना कम्यून्स हैं वो अपने अपना बजट पेश कर रही हैं, और मेजॉरिटी कम्यून्स के पास जो है वो इतना पैसा ही नहीं कि वो किस तरह सरमाया जो है वो आगे लगाए। लेकिन क्योंकि अभी डिबेट अभी शुरू हुई है, अब ये देखना है कि इसका एंड क्या होता है और कौन सी पार्टी जो है वो विनर, ये कह सकते हैं सियासत में कि किस ग्रुप को जो है वो अहमियत हासिल है, और वो अपने अपने जो उन्होंने चीजें सामने लेके आए, जो वो अपना एक सुखी कहते हैं कि हमने सड़कें बनानी है या हमने बिल्डिंग्स बनानी है या हमने ये करना है या हमने किसको चीज को सोशल वेलफेयर को सपोर्ट करना है, किस तरह, ये चीजें जो है ये अभी पता लगेगा जब फाइनल जो है इनकी ग्रुप मीटिंग्स होंगी, तो उसके बाद पता लगेगा कि कौन पार्टी जो है वो कितनी ताकतवर है, कौन सा ग्रुप जो है वो सामने आ रहा है।
1: देखा जाए तो अपने सिटी काउंसिलर काम कर रहे हैं, जो काम हमें नजर आ रहा है वो तो मलिक सिकंदर सिद्दीक, जो आपके साथी हैं, आप उनको बड़ा आपने सपोर्ट किया, आपने उनका जो है वो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आपने की, और आज भी जो है वो बैकडोर जो है वो आप एडवाइस देते रहते हैं। तो शाह साहब, और भी कोई नाम सामने आया है?
2: देखिए जी, इस वक्त जो मलिक सिद्दीक है वो अपना पार्टी, क्योंकि पार्टी फोरमैन भी है फ्री ग्रोने का, और वो एक लीडर के तौर पे ऊपर वो बात कर रहा है, जो भी जो वो बात कर रहा है वो अपनी अपने आप को, अपने ग्रुप को एक बात याद रखे कि इसने जो था वो मुआहदा किया हुआ था दूसरी छोटी छोटी पार्टियों से, जिनका कोई नुमाइंदा जो है वो कम्यून में इलेक्ट होकर नहीं आया, तो ये उनके साथ भी जो उनके भी कोई फोर्स ले थे, यानी कि उनके भी कुछ चीजें थी जो पेश करनी है, वो उन सबको सामने ला कर ये काम कर रहा है। इसी तरीके से काशिफ अहमद है, वो अपनी पार्टी जो रेडिकल वेंस है उसको उसके बहाव पे वो बातें कर रहे हैं, उसके खैर दूसरे भी साथी हैं जो रेडिकल के वहां बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि क्या ये चीजें जो है जिसके ऊपर इस वक्त बहस हो रही है, क्या इस बजट के अंदर ये अवाम दोस्त, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि अवाम दोस्त बजट है, या ये सिर्फ अमीर दोस्त बजट है? तो हमने ये देखना है कि क्या ये
1: दोस्त क्या होता है और अमीर बजट क्या होता है।
2: देखिए जी, जो अवाम दोस्त है वो अवाम का ख्याल रखते हैं, अवाम की सहूलत के लिए बहुत ज्यादा चीजें रखते हैं, और जो होता है क्या नाम है, ये तकलीफात नहीं बढ़ाते हैं कि आपने यहाँ गाड़ी पार करनी है तो आपको 50 करोड़ देने पड़ेंगे, 60 करोड़ देने पड़ेंगे, 4000 करोड़ देना पड़ेगा, 5000 करोड़ अगर आप वहां पे रिहायशी हैं तो आपको अपनी पार्किंग, अपनी ही पार्किंग में इतने इतने सालाना फीस देनी पड़ेगी, जिसको आप बास पार्टी जो है वो ये कह रही है कि 30,000 तक कर दे। तो ये जो है
1: मुमकिन है?
2: देखिए जी, ये जो है कोपेनहेगन को जो है वो खत्म कर देंगे, अगर आप पीछे जाएं 2023 से लेके 2025 तक, तो आप ये देखेंगे कि 23 से 25 तक 40 से 50 हजार जो है, 40 से 50 हजार जो लोग हैं वो अपना जो है वो बकायदा लोग जो है वो मूव कर गए थे कोपेनहेगन से, कुछ वेस्टाइन में चले गए, कुछ जो है वो लुंगवी और फॉर्म की जो साइड पे चले गए। तो लोग जो है मेजोरिटी जो है वो वहां से मूव कर गई, और ये वो ऑफिशियल टेल है जो लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने खुद इशू की है,
1: ठीक
2: और इसके अलावा जो लोग गए हैं वो एक अलग है। अब इस 2026 में अगर ये प्रॉब्लम करते हैं तो 2026 और 2027 में कितने लोग कोपेनहेगन से मूव करते हैं? देखिए, जिन्होंने गाड़ी रखी है, जो कोपेनहेगन से बाहर काम कर रहे हैं, वेस्टलैंड में काम कर रहे हैं, किसी जगह भी शीलैंड में काम कर रहे हैं, तो मियां बीवी को गाड़ी की जरूरत होती
1: जरूरत
2: है।
1: पड़ती है। ईशा साहब, एक सवाल है, चूंकि आपको काफ़ी तजर्बा है, आपने बहुत सारी पार्टियों को करीब से देखा है। ईशा साहब, 123 साल के बाद जो है ये लॉर्ड मेयर की जो सीट है सोशल डेमोक्रेट से छीन कर ये अब SF के हिस्से में आई है, तो लॉर्ड मेयर का ये पहला बजट है, तो पहले बजट में उन्होंने जो वादे किए हैं उनके लिए अगर ये पूरे ना किए गए तो ईशा साहब फिर क्या साइन आएगा?
2: देखिए जी, मुझे तो अभी तक ये लग रहा है कि ये सोशल डेमोक्रेट के पास ही मेयरशिप है, क्योंकि जो चीजें अखबार में आ रही हैं वो ज्यादातर ये आ रही हैं कि ये अमीराना बजट है। अमीराना बजट में इस पे ये बात करूंगा, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी फर्म्स को ठेके दिए जाएंगे कि आप फुटपाथ इस तरह बनाए, रोड्स को तंग किया जाए, पार्किंग प्लेस ज्यादा बनाए जाए, यहां से हमको जैसे अभी पिछले साल पार्किंग के अंदर 104 अरब रुपए का कोरोना का इनको प्रॉफिट हुआ है, और आप ये हिसाब लगाएं कि अगर इनको कम्यून को 104 अरब कोरोना का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, तो जो जो कंपनियां ये चलान कर रही हैं जिन्होंने ये ठेके लिए हुए हैं, उन्होंने कितने $100 बिलियन उन्होंने कमाए होंगे, और वो बगैर टैक्स के यहाँ से ले जाएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती उस वक्त हुई थी जब 90s के बाद इंग्लैंड से कुछ फर्म्स आई डेनमार्क के अंदर, उन्होंने कहा कि इसको लंदन मॉडल बनाना चाहिए। मैं उस वक्त वेंस्टा में था तो मैंने इसकी जबरदस्त मुखालफत की। मैंने कहा देखो, लंदन और न्यूयॉर्क मॉडल यहाँ कोपेनहेगन में मत बनाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके इस बात की क्यों तकलीफ है? तो मैंने कहा ये देखो कि लंदन और न्यूयॉर्क में माफिया के लोग रहते हैं, वो लोग वहां पे लोगों के पास करप्शन का बेशुमार पैसा है, वहां पे लोग जो है वो बगैर टैक्स के काम कर सकते हैं, हर एक चीज करते हैं।
1: मुश्किल काम है, यूरोप में तो कानून हुकूमत करता है, लोग तो नहीं करते।
2: नहीं, पर यहाँ पे सियासतदानों ने इस चीज को, इस खून को मुंह में लगा लिया, और इन्होंने यह क्या किया कि यहाँ पे जो है सड़कें तंग कर दी और पार्किंग प्लेस को जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया।
1: जब आपने और हमने जो एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन मुतालबा किया था कि यहाँ पार्किंग फ्री होनी चाहिए, लेकिन अब आवाजें उठ रही हैं वीकेंड में भी फ्री होनी चाहिए, पार्किंग फीस कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी आवाजें उठ रही हैं। तो शाह साहब, अगर ये फ्री कोरोना इस बजट का हिस्सा बनती है तो उनकी बातें नहीं मानी जाती, तो उन्हें बजट से बीच में रहना चाहिए या बाहर रहना चाहिए?
2: देखिए जी, बजट के बीच में रह के बात कर सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं, दलाइल सॉलिड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, ताकि आपकी आप बात मनवाने में। देखिए, इस वक्त जो 80% लोग हैं कोपेनहेगन कम्यून के अंदर, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं या कोपेनहेगन में रहते हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यून से आए हुए हैं या यूलैंड से आए हुए हैं या लांगलैंड से आए हैं या दूसरे दूर दराज इलाकों से आके कोपेनहेगन में वो वक्ती तौर पे 5 दिन काम करते हैं, फ्राइडे आफ्टरनून या सैटरडे को वो अपने अपने घरों को पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे आते हैं, वो ये समझते हैं कि जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको अगर ये सहूलत ना दी जाए गाड़ियों की और वो साइकिल पे जाएं, तो ये बहुत मुश्किल बात है। अब जिसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो साइकिल पे दो तीन बच्चों को ले जाकर और बारिश या तूफान के अंदर या बर्फ के अंदर वो इनको लेकर नहीं जा सकते। फिर कोपेनहेगन के शान भी ये है कि कोपेनहेगन के अंदर गाड़ियां जो
1: होनी चाहिए, हम भी बात करते रहते हैं, आप भी जिक्र करते हैं, कम्युनिटी फोरम भी इसका जिक्र करती है, अगर यहाँ जो है ट्रेनें बसें फ्री कर दी जाए टोटल, तो कितने का खर्चा आ सकते हैं?
2: देखिए जी, बसें जो है वो पहले ही गवर्नमेंट के बजट पे चल रही है। अगर गवर्नमेंट इसको फ्री करती है तो इनको आवाम को जो है उसकी सहूलत जरूर मिलेगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि बसें जो हैं वो सिर्फ चंद एक रूट्स पे चलती हैं, और बसों के लिए भी इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं, सड़कें बहुत ज्यादा तंग कर दी गई हैं, और बसें जो हैं उसके लिए भी अब ड्राइवर जो हैं वो तकरीबन इतने ज्यादा मयसर नहीं है यहाँ पे। और ड्राइवर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसी जॉब्स लें, मेजॉरिटी ड्राइवर्स जो हैं वो अब ट्रक्स की तरफ देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म्स बसेस की तरफ देख रहे हैं। आप कोपेनहेगन को देखें कि 40 किलोमीटर की स्पीड कर रहे हैं। 40 किलोमीटर क्या मतलब कि 15-16 मील की रफ्तार से आप गाड़ी चलाएं, आप सेकंड गियर से थर्ड गियर में जा ही नहीं सकते। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हमारे जो एक्सपर्टीज हैं कोपेनहेगन कम्यून ने जो रखे हुए हैं, जो एम्प्लाइज किए हुए हैं, वो इस तजर्बे से लोगों को
1: कर
2: बिल्कुल, हाँ, ये चीज जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप ये देखें कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट की वजूहत क्या है कि देखें, जब ये गाड़ी स्विंग होती है, पास करते हैं, तो इन्होंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया कि जो साइड के शीशे हैं वो जो है आरसी शीशे हैं, उसके अंदर आपका डिस्टेंस जो है, गाड़ी का जो पीछे गाड़ी आ रही है वो आपको बिल्कुल आपके बंपर से बंपर लगी होगी, तो वो शीशे से आपको नजर आएगी कि ये बहुत दूर है,
1: कितना
2: अभी अभी बहुत दूर है। और अगर आप दरमियान वाले शीशे से देखेंगे, सेंटर वाले शीशे से, तो आपको एकदम एहसास होगा कि वो तो बिल्कुल मेरे बैक पे लगी हुई है। तो लोग बाजों का जब बेंड को चेंज करते हैं, साइड को
1: तो
2: चेंज
1: शाह
2: करते
1: साहब
2: हैं, लेफ्ट
1: आपका
2: से राइट
1: मतलब
2: टर्न
1: है कि
2: करते हैं।
1: ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए, इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। डेफिनेट शाह साहब, ये मुल्क टैक्स पे चलता है, ये सहूलियात जो मिलती हैं ये टैक्स की वजह से मिलती हैं। कम्यून में जो सहूलियात मिलती हैं या बूढ़ों को मिलती हैं, हैंडीकैप्स को मिलती हैं, शाह साहब जब दूसरे ममालिक में ये सिंपल हैं कि बसों का पेंशन इसके लिए बहुत सारी सहूलियात हैं, लेकिन यहाँ तो पेंशन का जो हम सुनते हैं कि गुजारा करना मुश्किल है।
2: देखिए जी, आप इंग्लैंड में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, वहां पे आप सिर्फ ये प्रूफ कर दें कि आप 60 हैं, आप एक दिन भी ऊपर हुए हैं, 60 आपकी एज हुई है, तो आपको वो बगैर किसी सबूत के आपको वो कहेंगे कि आप बस में सफर कर सकते हैं, ट्रेन में इतना पैसा आपको लगेगा, आप सफर कर जाए। आपको मेजोरिटी बसेस जो हैं उनके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सफर कर सकते हैं, बल्कि आप तो वो अगर आप मैनचेस्टर से लंदन जाए तो जो गवर्नमेंट की बसें हैं जो नॉर्मल रूट से चलती हैं उनके अंदर भी आप फ्री हैं, और जो दूसरी बसें हैं उसके अंदर भी ना पेमेंट करने के बराबर आपको इतनी सहूलतें दी गई हैं। और फिर हैंडीकैप को तो वो बहुत ही ज्यादा, और बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं जिनको, जैसे कि हमारी एज है, इनको तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सीट देते हैं, पीछे नहीं बैठने देते, फ्रंट पे बैठाते हैं ताकि इनके लिए उतरना और चढ़ना जो है आसान हो जाए। बड़ी सहूलत
1: लेकिन शाह
2: उन्होंने
1: साहब
2: फ्रेम
1: आप
2: किया है।
1: तजावीज़ दे रहे हैं, आप लिखते हैं, चूंकि आप थिंक टैंक हैं तो आप वेंस्ट्रा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लीडरशिप को जानते हैं, और आप उनकी वॉलपेपर पे लिखते भी रहते हैं और आपको ये मैसेज जवाब भी मिलता रहता है। तो शाह साहब, एज ए गैर मुल्की इस वक्त करना क्या चाहिए?
2: देखिए जी, इस वक्त हम लोग गैर मुल्की तो यहाँ पे वो होगा जिसको अभी तक यहाँ के परमानेंट वीजा नहीं मिला। यहाँ पे जब जिसको येलो कार्ड मिल जाता है, स्विस सिक्किम बेवीस मिल जाती है, तो वो उसके उतने ही राइट्स हैं जितने एक डेनिश पासपोर्ट होल्डर के हैं। मसला अब ये क्या है, मसला ये है कि कुछ कानून ऐसे बन चुके हैं इस मुल्क के अंदर जो कि लॉ फोर्सले है, जो लॉ नहीं है, लॉ भी हो तो वो आइन के, अगर आइन के खिलाफ वर्दी है तो वो जो है वो खत्म हो सकते हैं। हमारे कोई भी सियासतदान जो है इसके ऊपर बात नहीं करते, ना वो इसके ऊपर कोई राय लेना चाहते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मसला ये है कि कोपेनहेगन और वेस्ट आइन में लोगों को वैसी ही सहूलत देनी चाहिए जैसे उडनसे के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर उन्होंने सहूलतें बनाई हुई हैं। आपको पता है कि आपको खालिद भट्ट साहब ने ये बताया था कि उडनसे बकायदा स्टेशन के ऊपर, मैं अभी देख के आया हूँ, उडनसे स्टेशन के ऊपर उन्होंने जो है वो बकायदा बॉस सर्विस बनाई हुई है कि आप उतरते
1: शाह
2: ही
1: साहब
2: वहीं उसके
1: आसानियां
2: अंदर
1: आ
2: चले जाए।
1: रही हैं उडनसे वालों को, पहले मिल गई हैं। अभी यहाँ के जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं, जितने भी कम्यूनों में बैठे हैं, आप हमेशा कहते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। शाह साहब, ये जो अभी लॉर्ड मेयर हैं अपना यहाँ कोपेनहेगन से, कोपेनहेगन की पार्लियामेंट, तो मैं आपका तजिया जानना चाहूँगा, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है, कि वो इस सारे सिस्टम को कामयाब हो जाएंगी, या वो तनकीद का निशाना बनेंगी, या वो सबकी तालियां लेंगी, या सबकी दुआएं लेंगी?
2: देखिए जी, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है इनिस लिस्टन, और ये एसएफ की जो बॉबेस्टर है, इसके पास इतना बड़ा तजर्बा नहीं है। कम्यून और पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंस यही है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो सिर्फ लॉ मेकर्स होते हैं या पार्टी की सियासत को आगे लेके चलते हैं। जो कम्यून होती है, कम्यून के बजट के अंदर जो सियासतदान इलेक्ट होते हैं, काउंसलर इलेक्ट होते हैं, उनको कुछ तो अपनी पार्टी का भी मंशूर देखना पड़ता है और कुछ उनको अपनी जहानत भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये देखना पड़ता है कि हमारे इलाकों के इलाके में जहां कल को हमने दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए जाना है, वहां हम क्या पेश कर सकते हैं और हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पे तख्तियां नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर लिखी जाती है कि इस बंदे ने ये चीजें जो है वो मिनट्स पेश की है और उसके ऊपर हाँ या ना हुई ये एक अलहदा बात है। लेकिन हिम्मत वही कर सकता है जो अवाम के अवाम दोस्त हो, अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश करे, ख्वा वो अकेला वोट हो या उसके पास 50 वोट हो। बात उनको अवाम की करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करना चाहिए। पूरे कोपनहेगन के अंदर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग होनी चाहिए। बाज़ुकात आप ऐसी जगह जाते हैं कि आप जहां किसी को विजिट करने के लिए जाते हैं पूरे वेस्ट आयन और कोपनहेगन में मेजोरिटी जगह पे, तो आपको वहां पे बकायदा वो जो है वो हाउसकीपर से एक कार्ड लेना पड़ता है जो आप अपनी गाड़ी में रखेंगे ताकि आपको पार्किंग टिकट ना लग जाए। और ये इतना डिफिकल्ट है कि आप किसी को विजिट करने जाते हैं और
1: तो
2: आपको
1: शाह
2: इस
1: साहब
2: असूल
1: इसका
2: का पता
1: मतलब
2: नहीं।
1: है कि जो मामलात हैं सख्त सख्त होते जा रहे हैं, कानून में सहूलियात नहीं मिल रही, सख्तियां मिल रही हैं, गो के रेवेन्यू भी जो है वो बाकायदा मिल रहा है, अच्छी तादाद में प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। तो शाह साहब हमारे पास 1 मिनट है, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे?
2: जी, मैं नौजवान नस्ल को ये कहूंगा कि देखिए ये आपका मुल्क है, आप पाकिस्तान की सियासत को भूल जाएं, यहाँ की सियासत में यहाँ के कानून का आप एहतराम करें, आपको कोई बुरा शायरी नहीं कहेगा। हम इसी मुल्क के अंदर 1970 से लेके 1990 से थोड़ा सा ऊपर हमने यहीं पे जिंदगी गुजारी है, हम भी उस वक्त जवान थे, यंग थे। तो ये बताएं कि ये लोग राशिस्ट नहीं थे, बल्कि हमने खुद अपने अंदर राशिज्म पैदा किया है, इसको हमें खत्म करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त हमें एहतियात करनी चाहिए, अगर आगे भीड़ है अगर रश है तो बड़े एहतराम से अपने इंतजार वेट करें। बल्कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम बहुत ज्यादा रश है, तो आप 15 मिनट पहले निकल जाएं, आप मोबाइल टेलीफोन को इस्तेमाल ना करें गाड़ियों में। और जितने भी हमारे नए बंदे आ रहे हैं जो इस वक्त वाहन और दूसरी गाड़ियां बड़े ट्रक चला रहे हैं, वो इतना रफ सड़क को एक से दूसरी साइड पर जाते हैं, तो और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो लाजमन गवर्नमेंट को कर देना चाहिए कि अगर कोई आगे गाड़ी जाती हुई इंडिकेटर दिए बगैर ही जो है
1: तो
2: वो रश टाइम में,
1: शाह साहब चलते चलते साइकिलों वालों को क्या पैगाम देंगे?
2: इस साइकिल वालों के की बाइक जो है इसको इंश्योर्ड होना चाहिए, इसको बकायदा एक नंबर इशू होना चाहिए, जैसे ये 70s में था 60s में था, इनके ऊपर नंबर होना चाहिए और ये बकायदा इंश्योर्ड होने चाहिए ताकि इनको चलाते हुए पता लगे कि ये किसका साइकिल है, कौन टक्कर है, कौन गलत चल रहा है। और इनको इनको भी उतनी ही सजा देनी चाहिए जितना एक मोटरसाइकिल वाला या एक कार वाला मुजरम है।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन ये थे हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जिन्होंने कीमती मालूमात दी। कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, हमारे प्रोग्रामों में का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए हमारा चैनल हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: आउज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाई नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह हमने सोशल मीडिया पर आपको बताया था कि आज हमारे लाइव मेहमान होंगे, एक तो हमारे थिंक टैंक हैं, दूसरे हमारे तजिया निगार हैं और दोनों सियासतदान भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं कम्यून की सियासत पर, लोकल सियासत पर। और आजकल आपको पता है ना जी कि बजट भी जो है पेश हो रहा है, बजट पर भी बहुत सारी बातें जो होती हैं। तो हम शुरू करते हैं, दो मेहमान हैं, मैं तारफ़ करा दूँ। सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ, दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज़ पर।
2: जी राजा साहब, आपको भी, आपके लिसनर को भी और आपके नाज़रीन जितने भी हैं और अदनान साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। शाह साहब, शुरू करते हैं, सवाल है, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, बारी बारी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बताइए कि इस साल के कम्यून के बजट की सबसे आम तरजियात क्या है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त जो सबसे बड़ी तरजियात होनी चाहिए वो ये है कि जो इस वक्त क्राइसिस में डेनमार्क चल रहा है उसको कैसे निकाला जाए, वो बजट में नहीं है। और जो बजट में है वो यही है कि कितने मकान बनाए जाए, लाइट हाउस बनाए जाए, कितनी सड़कें बनाए जाए, कितनी पार्किंग प्लेसेस बनाए जाए, कहीं कहाँ से स्कूलों की जो आमदन है वो स्कूलों को कहाँ से कट किया जाए, कहाँ जो बच्चे हैं उनको किस तरह सहूलतें जो हैं उसको माइनस किया जाए। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं, जो बजट अभी 100% बजट की जो शक्ल है वो रिटन सूरत में कहीं भी नहीं आई, सिर्फ जो डिस्कशन हो रही है, जो हम कॉस्मोपोल टीवी और दूसरे अखबारों से हमें जो थोड़ी बहुत खबर मिलती है या कोई तजिया नगार डैनिश जो है वो बात करता है तो उसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी चल रही है कि छोटी जो वेस्ट आइल की जो कम्यूने हैं इसके अंदर अभी तक वो गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही जो कोपनहेगन कम्यून के अंदर आ रही है।
1: कम्यून के अंदर आ रही है, बिल्कुल शाह साहब आपने बजा फरमाया। अदनान, यही सवाल आपके लिए है, आप क्या कहते हैं, चूंकि आप बहुत सारी चीजों को देखते रहते हैं करीब से।
3: सर, इस वक्त देखा जाए ना, सबसे बड़ी बात यह कि जो बजट है ना ये बड़े मुश्किल है क्योंकि जो मसाइल हैं उनको देखा नहीं जा रहा और उन पे बहुत सारा क्या कहते हैं जिसका सेविंग करने की कोशिश की जा रही है। और बेस्तान में भी वही सेम चीज चल रही है और वही कूपन है हमें चल रही है इस वक्त। और इस चीज को देखा जाए ना टेक्टिकली तो ये प्रॉब्लम पाएगा क्योंकि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि स्कूल्स, ओल्ड रूम्स और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मगर उसके अंदर बंदा देखे ना सारी कम्यूनों को एनालाइज करे और जिन जिन से हमसे हमारे रबते भी हुए हैं और जिन जिन से हमारी बात भी हो रही है और जो टेबल पे बातें भी हो रही हैं वो यही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि इतना सारी बजट ये करके तो लॉन्ग से ट्रिप पे ये नुकसान है। और इस चीज़ों पर कुछ पार्टी साड़ गई हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मसला ये होता है कि एक और चीज है जो मैं कह दूं कि इस साल जो पैसे कम्यून को मिलते हैं ना स्टेट पुलिस एक पुलिस है वो भी डीप डीप तरह से कम्यूनों को दिए गए हैं। तो देखा जाए तो इससे डीपली कुछ कम्यूनों के अंदर जो स्पेक्टिक था ना कि उनको मिलना है उनको वो नहीं मिला तो उससे क्या कहते हैं उनकी परेशानी थोड़ी ज्यादा हो गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्ट आइलैंड पे भी काफी क्या कहते हैं टफ टाइम है और काफी पार्टियां जो है वो
1: लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि आम शहरी के लिए इस बजट में सबसे बड़ी फायदे वाली क्या बात हो सकती है।
3: सर, मैं अभी देखो मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें उनको कोई फायदा भी है क्योंकि फायदा उस वक्त होता है जब आप बच्चों वाली फैमिली को या जो बुजुर्ग हैं जिस तरह ये इस तरह की चीजों पे बंदा क्या कहते हैं फोकस दे। मगर जब आप शुरू से ये बजट के अंदर लिख देंगे जो ये वेल्थी वाले डेफिनेटली ऊपर जो बैठे होते हैं कुछ सियासतदान उनको मालूम होता है वो शुरू से लिख दे कितने पैसे बचाने हैं ना तो फिर शुरू से ही क्या कहते हैं एक माहौल बड़ा चेंजेस हो जाता है। अभी जैसे कोपेनहेगन कमून है उसके अंदर जो जो खबरें बाहर आ रही हैं, मुझे तो वाकई समझ नहीं आ रही कि ये SF इंग्लिश लिस्ट वाले बैठे हुए हैं, ये विंगस्टार कंसर्वेटिव वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पॉलिसी नजर बाहर आ रही है वो तो उनकी आ रही है नजर। तो इस तरह से बंदा देखे ना तो बहुत सारी बातें अंदर से बाहर निकलती जा रही हैं, आती जा रही हैं, क्योंकि जो वो होता है ना एक सिस्टम होता है ह्यूमन स्वभाव का, वो करीबन लोग जो अपना राय दे सकते हैं स्कूल और सारे लोग वो कल तक खत्म हो गए हुए हैं, आज मतलब 3 तारीख तक। तो मतलब समझे कि कल परसों तक ये नेगोशिएशंस
1: मतलब
3: जो है ना
1: बिल्ली
3: ये
1: जो है वो
3: सात
1: थैले
3: साल
1: से
3: तक की
1: बाहर आ
3: रहती
1: जाएगी। शाह साहब आप बताएं, शाह साहब
3: है।
1: आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है इस बजट में बड़ा?
2: जी इस वक्त तो आम आदमी क्या, इस वक्त आप देखें कि पार्टियों के अंदर इनकलाब आने शुरू हो गए हैं। आप देखें कि वेंस्ट्रा के अंदर जो है वो अपने पार्टी फोरमैन के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए हैं। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है, क्योंकि लैंडसमैन जो है जो जराइत का काम करते हैं उनके अखराजात जो है वो आसमान से बातें करने शुरू कर दिए हैं। और फिर उनके बच्चे भी हैं, जैसे अभी अदनान ने बताया कि उनके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल में जाना है और दूसरी जगह पे, और उनको जो बेंजीन और डीजल की गाड़ी है उनके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से ये जो चीजें हैं ये सामने नहीं आ रही, बल्कि पिछले इस हफ्ते में जो प्रोटेस्ट हुआ है अपना लैंडमैन का फलके सिंह के सामने, वो भी खुल के सामने आ गया है। तो मसला ये है कि SF और इनिस लिस्टन ने जो वादे किए थे अवाम के साथ वो सवालिया निशान बन चुके हैं, क्योंकि जो अभी तक ना SF वाले बता रहे हैं जैसे कि अदनान ने बताया, ना SF वाले बता रहे हैं, ना इनिस लिस्टन वाले बता रहे हैं, ना ही उनकी जो स्पोर्ट पर दूसरी रेडिकल वगैरह या सोशल डेमोक्रेट ये बता नहीं रहे कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो फेस की हैं। हालांकि इनको चाहिए, आज आप देखें तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 18 करोड़ का हो गया है, ये डेनमार्क की हिस्ट्री का सबसे महंगा तरीन पेट्रोल हो गया है। और इससे आप ये देखें कि अगर कोई फैमिली है जिनके पास पेट्रोल गाड़ियां, और मेजोरिटी के पास इस वक्त कोपेनहेगन और वेस्ट आइन के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी है, और वो इतनी महंगाई में जब उनकी वही पे है और वही पेंशन है हर एक चीज है, तो वो किस तरह करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर बात नहीं कर रही, क्योंकि असल में हम स्टेट के तो स्टेट ने तो हमें इजाजत दी है कि आप पूरे डेनमार्क के अंदर कहीं जाकर रह लें, लेकिन जहां हम जाकर रहते हैं वो हमारी कम्यून होती है, और कम्यून जो होती है वो एंस वाली होती है, अपने जो अवाम होती है जो उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, फल्क होती है। तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि एल्बर्सोन कम्यून जो है उसने अभी तक कोई ऐसी चीज शाया नहीं की कि हम देखें कि इसके बजट में कौन सी जो है वो अवाम दोस्त है। मैं तो यही कहूंगा जैसे मैंने पिछली दफा कहा था कि ये अवाम दोस्त नहीं बल्कि ये अमीराना बजट जो है वो सामने
1: ये
2: आ रहा है
1: अवाम
2: कि
1: दोस्त नहीं,
2: जो
1: ये अमीरों का बजट है। अदनान आप क्या कहते हैं कि क्या मौजूदा बजट अवाम की जरूरियात तो पूरी करता है, क्या हकीकी जरूरियात पर पूरी कर सकता है, पूरी करता है या कर सकता है?
3: सब जिस तरह से बजट अभी है वो कोई पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि मसला ये है कि जैसे हम लोग कभी मैं दो तीन एग्जांपल आपको ये दे देता, तीन चार दे सकता हूँ। हम देखे एमसलोन ग्लोव स्टोव देखे, हाई कास्ट स्टोव देखे, ब्राउन भी देखे, और कुछ बंदों ने फिर रब्ते भी किए और इस्लाम मसले भी किए, और जब हमने वो इनको चेक किया तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि उसके अंदर कोई ऐसा क्या कहते हैं पॉइंट नहीं था। कुछ पॉइंट है थे जो बंदा कह सकता है कि अनसानी कर सकता है, मगर आप जब लेसी आप को एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ कि बंदा गॉस प्लेस देखें कोपेनहेगन, सबको पता है गॉस प्लेस है, आप वहां पे कोई बिल्डिंग हो उसको आप उठा के ना पो ले जाए, वो वालदेन के लिए कोई कोई आसानी तो नहीं ना होगी। और इस ये चीजें इस तरह इकट्ठा करना, एक जगह से लेके उधर चले जाना, उधर से लेके इधर चले जाना, ये करना वो करना, वो बड़ा मुश्किल क्या कहते हैं चीज हो जाती है। और जैसे ये अभी कहा गया है कि ये जो आज एक किस्म की क्या कहते हैं टेक्निकली हिस्ट्री है कि विंस्टर की नेशनल जो पार्टी है उसमें से 19 सीटों में से 5 ले जाके कहा है कि हमने अपनी पार्टी के खिलाफ या अगेंस्ट ये कहते हैं वोट दे दिए। मतलब आप देखिए कि 29% ने अपनी पार्टी चेयरमैन के अगेंस्ट दे दिए। पार्लियामेंट का जो वर्किंग इस वक्त एक्टिव चेयरमैन है उसकी जो पार्लियामेंट को चलाता है जिसकी एक किस्म की कहां भी और पावर भी उतनी होती है जितनी प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो अगेंस्ट चला गया है कि मैंने नहीं वोट इसके हक में देना। तो ये देखिए ना, मतलब कि एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन अपनी पार्टियों में काफी है और काफी क्या कहते हैं मुसीबतें हैं कि उन चीजों को देखने की जरूरत है। और दूसरा ये भी है कि जैसे आपको पता है कि ये बेंजीन जो है हम सब ने पैक किया था कि समर के बाद ये 16 पे खड़ी रहेगी, 15-16 पे, मगर वो 18-19 पे पहुंची हुई है। तो देखिए ना कि कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा ना। आप देखिए सूरत आज आप प्राइजेस देखें, वो भी वहां पे ही खड़ी हैं, वो भी कोई इतनी डाउन नहीं हो रही, वहां
1: तो
3: पे ही खड़ी हैं।
1: अदनान जिस तरह बता रहे हैं, क्या शहरियों पर टैक्स या दीगर अखराजात में इजाफा जो है मुतवक्को है?
3: नहीं, टैक्स तो नहीं इनने बताना, वो तो मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा टैक्स का, क्योंकि वो टेक्निकली नहीं, मगर ये बंदा स्पेक नहीं कर सकता कि टैक्स नीचे हो, टैक्स वहां पे ही रहेगा। जो टैक्स ने क्या कहते हैं हटाना था वो तो डिसाइड हो गया हुआ था, मगर वो 2028 से डिसाइड हुआ हुआ है, क्योंकि वो फिर ये जब नेशनल बजट बनेगा ना फैंस लॉ का, तो फिर उसके क्या कहते हैं उसके अंदर आएगा जो है कीमतों के बारे में जो सवाल हैं, वो यही है कि जो स्वीडन का मॉडल है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फनी चीज ये है कि स्वीडन के अंदर जो मॉडल लाया गया हुआ है ना, वो रेड पार्टी यानी कि लाई वो पॉली पची लाई थी अपने बेले में जब वो लाए थे, तो वही सिस्टम यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मगर उसका मसला ये है कि वो सिस्टम अभी अभी साल लग सकते हैं आने में, तो वो साल लोग एक साल तो नहीं ना इंतजार करना चाहते, लोग तो कुछ अभी इस वक्त क्या कहते हैं देखना चाहते हैं। हम जहाँ पे मैं सारा बैठे हुए हैं बिस्लोन में, यहाँ पे तो पहले एक क्या कहते हैं बजट आया उसका तो एक पहले एक बम था, अब दूसरा बम ये है कि ये जो इनको छूट मिलती है वो भी इनको नहीं मिलनी। तो अब अनस्पेक्टेड है कि पैसे कहाँ से लाए जाएंगे और क्या किया जाएगा, और ये चीजें तो थोड़ा बहुत अंदाजा होता है क्योंकि हम खुद बैठे रहे हैं और हम टेबलों पर भी काफी आए हैं रिसेंटली, मगर वही होता है कि कुछ ना कुछ तो लॉन्ग सेक्टर पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मसला ये है कि जितनी देर तक क्या कहते हैं ये ईरान का यूक्रेन का मसला नहीं हल होगा उतनी देर तक ये प्रॉब्लम रहनी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो यूक्रेन की तरफ जाता है। अभी ये 2 दिन पहले खबर मेरे ख्याल से आई थी कि अब यूक्रेन फिर रोने लग पड़े कि उनके पास पैसा नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मसला है।
1: आपने अदनान आपने बड़ी बात की है, शाह साहब की तरफ चलता हूँ। शाह साहब, ये कैमून के पैसे कहाँ और किन शोबों पर ज्यादा खर्च होंगे, और उसके अलावा क्या बजट पर गैर जरूरी अखराजात कम करने के लिए कोई अमली मनसूबा भी है शाह साहब?
2: ये जो बात छेड़ी है अदनान ने, ये बड़ी सियासी और बड़ी टेक्निकल बात है कि कम्यूनों ने जो पिछले चंद सालों में जो पैसा इकट्ठा किया था वो, और इनके पास जो ओस था वो स्टेट के पास चला जाता है और स्टेट जो है वो जमानत के तौर पे इस पैसे को रख लेते हैं। वो पैसा सारा का सारा इन्होंने उठा के यूक्रेन की वार और दूसरे वार जंगी इलाकों में इन्होंने घुसेड़ दिया और कुछ अपने डिफेंस पे लगा लिया थोड़ा बहुत। तो अब मसला ये है कि कम्यून स्टेट के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो दे, स्टेट कहाँ से पैसा लाएगी? स्टेट पैसा लाएगी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देगी, जैसे अब बढ़ी है, जैसे कि अब सिट्रोन जो है नींबू जो है 3-4 नींबू जो है वो 24-25-25-30-30 करोड़ के हो गए। इसी तरीके से सेबों की फ्रूट की जो कीमत है, इन्होंने जनवरी में ये शो डाला था कि हम आएंगे तो हम जो मम्स हैं उसको गिरा देंगे और मम्स कम हो जाएगा, जुलाई के अंदर कम हो जाएगा, फिर हम प्राइसेस जो है उसको कम कर देंगे फूड से। तो ये इन्होंने नहीं की, बल्कि अब ये चीज हो गया है कि अगर ये कल को पहली जनवरी को या उससे पहले ये मम्स खत्म करते हैं तो फ्रूट तो फिर भी महंगा है, सब्जी तो फिर भी महंगी है, क्यों कि वो प्राइसेस इतनी हाई चली गई हैं। तो उसमें से अगर वो 25% मम्स निकालेंगे तो फिर भी जो है वो अगर इस वक्त जो 25-30 करोड़ के जो चार नींबू मिल रहे हैं सिट्रोन, अगर आप उनमें से ये निकाल लेंगे तो वो आप देखेंगे कि इनको 1 या 2 करोड़ सस्ता होगा वो। तो ये नुकसान जो है ये आवाम से पूरे किए जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल गुलामाना जहनियत की है और ये चाहती है कि हम लोगों को दबा कर रखे। और दूसरी चीज, आपने दरान की बात पर गौर नहीं किया कि वेस्ट आइन के अंदर और कोपेनहेगन के अंदर जो है वो, चलो कोपेनहेगन की तो बात एक अलग चीज है, वो बड़ी कम्यून है, लेकिन वेस्ट आइन के अंदर जितनी भी कम्यून है इसके अंदर ज्यादातर नए मुंतखब काउंसलर्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा अफारिंग नहीं, इतनी ज्यादा तजर्बा नहीं, उनको पता ही नहीं कि बजट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ सुन के तो हिसाब किताब नहीं लगाना, वो किसी चीज पे बहस नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं कि किस पोलियो से किस जगह से हम पैसा उठाकर कहाँ लगाना है। वो तो जैसे उनको पार्टी कहेगी, उन्होंने कहा जी हमने तो मुआदे किए हुए हैं, हम इस पे हाँ करेंगे, तो आपने भी हाँ करनी है। तो ज्यादातर इंटरेस्ट इस वक्त कोई नहीं है मेरा ख्याल में कि अगर ये इसी तरह
1: लगता है तो, कि आप पॉइंट स्कोरिंग की बात करेंगे, पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग करती है। अदनान आप बताएं कि स्कूल के बच्चों के लिए बजट में कोई खास रखा गया है, कोई चीज रखी गई है, कोई खास बजट रखा गया है?
3: नहीं सब जे जो मैं एक बात कह दूं कि ये बात जो कह रहे करेक्ट है बहुत सारी चीजों का। मिसाइल पता है इस वक्त दो चीजों की मिसाइल भी हैं कि देखा जाए ना जिस तरह है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए ना तो वेस्ट आइन में ना और कुर्बान आम के अंदर ना बहुत सारी क्या कहते हैं तब्दीलियां आई हुई हैं, बहुत सारे नए मेयर आए हुए हैं, नया क्या कहते हैं कैबिनेट्स आए हुए हैं, तो डेफिनेटली वो टाइम लगता है कि उनके एक्सपीरियंस से उस चीजों के अंदर रहने से, क्योंकि आप देखें कोपेनहेगन में तब्दीली आई हुई है, क्लासाक्स में तब्दीली आई हुई है, ब्रॉनबी में भी एक किस्म का नया ही है, 1-2 साल वो वहां बैठी थी, SF बैठे हुए हैं, बिलो में भी, एब्सलोन में भी क्या कहते हैं चेंज आया था, तो ये एक और एब्सलोन में तो ऐसा चेंज है कि देखा जाए तो टेक्निकली तो आवाम जो है वो है रेड मगर बैठा एक ब्लू हुआ है, तो मतलब कि ये टेक्निकली बड़ी होता है। जो आपका सवाल है उसके अंदर मैं आपको एक मोटी सारी एग्जांपल दे देता हूँ। हम एक यहाँ पे एब्सलोन के अंदर एक चीज बनी थी कुछ अर्सा पहले, उसका ये जो नया बंदे बैठे हुए इनको मालूम ही नहीं है कि वो चीज स्कूल के अंदर सिस्टम है, वो सिस्टम स्कूल बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। अब ये जैसे बैठे हुए हैं सारे, इनको पता ही नहीं कि वो सिस्टम कैसे, क्योंकि सियासी बंदे बहुत नए हैं और वैकनी में भी बहुत नए हैं, तो फिर वो थोड़ा होता है कि बंदे को
1: देखे ना ये नए तो अपनी जगह, उसके लिए जो आगे देखना है कि जो जरूरियात है वो किस तरह पूरी करें। नए की तो जरूरियात पूरी होती रहती है, कोई भी मेयर बन जाए, कोई भी हो जाए। आप देखे ना नौजवानों के लिए खेल, तालीम, रोजगार के हवाले से भी तो कुछ रखा जाता है, क्या इकदाम कर रहे हैं
3: सब? वो तो
1: अगर नौजवान आए हैं तो उनके लिए नौजवान क्या कर रहे हैं मेयर,
3: ये क्वेश्चन तो अब कोई बंदा क्या कहते हैं मेरी बात सुन के शायद नाराज हो जाए, गुस्सा कर जाए। मैं आपको एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ। ये जहाँ मैं और क्या कहते हैं हम साथ साथ बैठे हुए हैं, जिस दिन यहाँ पे इनने बजट वगैरह पेश करना था और सारी टीम को क्या कहते हैं बताना था कि हमने ये खैचलो बनाया और हम इस तरह जा रहे हैं, वहां का डिप्टी मेयर ने कह दिया था कि पता नहीं किस वजह से उसने माजत कर ली हुई थी, और ये डेट कम से कम 6 महीना पहले पता थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी कि क्या नहीं थी, वहां पे डिप्टी मेयर नहीं था आया, और बाद में वही सोच पे आ गया था कि ये बंदा हर बार ऐसे करता है। तो मैंने फिर एक बंदे को मैंने उधर यही कहा कि देखिए अब वो बंदा ऐसे करता है तो ये तो फिर आपको खुद हाईलाइट करना चाहिए ना कि वो क्यों करता है, ये तो पार्टी को कहे ना किसी को कहे तो बंदे को पता चले ना, क्योंकि जब आप एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप डिप्टी मेयर हैं, आपके पास मेयर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक लेदर सा रोल होता है क्योंकि आपने मेन रोल प्ले करना है। इवन ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद ना हो शायद टीम में शायद दूसरी टीम बनाई हो जिस दिन निगोशिएशन करना हो, मगर वो लहरा बात है, मगर उसका काम तो इतना है ना कि वहां पे वो उसको बता सके कि हमने ये क्यों ऐसे किया है, ये कैसे किया और इसकी क्या वजह है और इसके पीछे बैकग्राउंड

0: तो एक एक क्रोन को देख के इस बार आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि कुछ चीजें जो हैं, मैं आपको बता दूं कि एक व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि मसला ये है कि ये जो 2027 का बजट है ना, इसके अंदर कुछ तब्दीली आई है कि कुछ जो पहले ह्यूम्स के अंदर ऑप्के होते थे ना, वो ऑप्के वो कमून के अंदर भी आ गए, वो कमून को दे दिए हैं और वो पैसे फॉलो नहीं हुए जो मुझे समझ आ रही है। तो आप ये भी एक मसाइल है कि आपको काम ज्यादा मिल गए हैं मगर सर आपको वो पैसे नहीं मिले, तो ये भी तो आप देखना है ना
1: काम शाह
0: कि ये
1: साहब
0: चीजें
1: ज़्यादा
0: कैसे
1: मिल
0: हैं।
1: गया तो पैसे नहीं मिले, तो शाह साहब ये मैं आगे दूसरे मिसाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्या जो गैर मुल्की हैं या तारकीन वतन हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको जो है अभी उनको भी वही की तरह के मुनासिब मौके मिलते हैं हर चीज़ में?
2: जी बिल्कुल, सबको मिलते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या वो आइन और अपनी लोकल जहां वो रह रहे हैं कम्यून, उनके जो कवानीन हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते। अभी इदनान ने बड़ी प्यारी बात की है, मैं उसको थोड़ा सा देखूंगा और बताऊंगा ताकि आपके व्यूअर्स को जो हमारा मसला है वो समझ आए। 70s 80s 90s के अंदर ये होता था, mid 90s तक ये होता था कि जो कम्युनिटी होती थी उसके अंदर जो होते थे ना क्रीस, जिसको हम हल्का कहते हैं, उस हल्के के अंदर जो होते थे मुख्तलिफ पार्टी थी, मतलब सोशल डेमोक्रेट है, रेडिकल है, अवेंसा है, कंजर्वेटिव है, जो भी पार्टी होती थी वो अपने जो लोकल प्रॉब्लम होती थी उस पर बहस करते थे। उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स या जो नामजद मेंबर्स होते थे या काउंसलर्स वगैरह वो वहां पे बैठते थे, फिर उसके ऊपर एक डिस्कस होती थी और देखा जाता था कि इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, आवाज कहाँ जुड़ रही है। तो इस दफा जो अदनान बात कर रहा है, इस दफा लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ के लोकल प्रॉब्लम क्या है और बजट में क्या पेश कर दिया गया और लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर ये पूरा महीना सितंबर का इसी तरह महंगाई रही तो अगले महीने में अक्टूबर में लोगों की चीखें निकल आएगी, लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और ये जो टैक्सीज वगैरह का और ये दूसरा जो ड्राइविंग सिस्टम है, जितना भी डेनमार्क के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी कोलैप्स होकर आ जाएगा। आपको पता है कि इस वक्त ऑलरेडी जो आपकी एस्ट्रो है ट्रेन वगैरह है उसके अंदर ड्राइवर नहीं उनको मिल रहे, वो भी फ्रस्ट्रेशन में है सब लोग, क्योंकि वहां के जो उनको काम करना पड़ता है और जो उनको पे मिल रही है वो भी बहुत कम है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको इस चीजों पे सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इदनान ने जो पुट अप किया है मसला, वो यही है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटी है क्या वो अपने अवाम की जो उसके अंदर रह रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर वो नहीं समझ रहे तो फिर इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जो पार्टीज हैं, हो सकता है कि डेंस फड़के पार्टी का फोरमैन आ जाए, इनका सॉयबेयर की पार्टी का फोरमैन आ जाए, कोई और आ जाए बॉमिस्टर, क्योंकि ये जो पुरानी पार्टीज हैं इनके पास जो ना तजर्बाकार लोग सामने आए हैं उनका अवाम से रब्ता नहीं। अगर वो अवाम से रब्ता रखेंगे तो ये चीजें आगे चल
1: चलें
2: के
1: शाह
2: ठीक
1: साहब, ये
2: होंगी।
1: तो साथ साथ चलता रहेगा। अब आते हैं अगली तरफ बढ़ते हैं, ये जो मसाइल समाजी मसाइल होते हैं शाह साहब, आप बेहतर समझते हैं, आप भी पेंशनिस्ट हैं, बुजुर्ग हैं, अदनान तो जवान है अभी। ये जो बुजुर्गों या उनके कम आमदनी वाले जो लोग हैं या खानदानों के लिए बजट में कोई सहूलत रखी गई है या सहूलियात रखी गई हैं?
2: जी, बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि इनके लिए कोई रखी गई है, बल्कि इनको एक जो है वो गुलाब जामुन या लॉलीपॉप इनको दिखाया जा रहा है कि अगले साल हम ये करेंगे। भाई चीखें अभी निकल रही हैं, महंगाई अभी है, डीजल पेट्रोल की कीमतें इस वक्त हवा में है, लोग मेजोरिटी फर्में बंद हो रही हैं, आबस से बढ़ रही है, टैक्स कैसे जाएगा? जब ज्यादा लोग काम करते हैं तो कम्यून के अंदर टैक्स का रेट बढ़ जाता है, लोग ज्यादा अमीर हो जाते हैं, कम्यून भी जो है उसके उसके बजट में भी ज्यादा पैसा आ जाता है। तो अब जब ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ज्यादा आ गई है हम पे, तो अवाम जो है वो तो पिस के रह जाएगी और कम्यूने जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये बेहतर यही होता कि कम्यूनों को चाहिए था कि जो इनके علاقوں میں ایکسپرٹیز دے رہے ہیں یا ایکس سیاستدان جو پہلے تھے ان کو بلا کر ایک

0: उनके साथ मशवरा करना चाहिए था, उनके साथ एक डिबेट करनी चाहिए थी कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसका हल कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर जो बच्चों वाली फैमिलीज हैं या वो जिन्होंने जो गाड़ियां या ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट में ये ट्रेन्स भी आती हैं सारा कुछ, इससे जो सारे रिलेटेड हैं अगर वो कल को बेकार हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा? क्या वो ये जो 15-20 हज़ार करोड़ उनको टैक्स काट के तो उनको थोड़े से रकम मिलेगी, क्या इसमें वो गुजारा कर लेंगे? क्या वो अपने मकानों का किराया दे सकेंगे? आप ये देखेंगे कम्यूनों के अंदर रहते हुए भी इस वक्त इन्होंने जो अनमेली बॉडीज हैं उनके किराए जो हैं उनको बढ़ाया है, कम नहीं किया, और यह भी कम्यून का फर्ज बनता है कि वो अनमेली बॉडी से बात करें और उनको समझाए कि भाई आप जो है ये किराया दिन ब दिन ना बढ़ाए। अब आप ये देखें कि बिजली के बिल जो हैं ये पिछले साल की नस्बत इस दफा बहुत ज्यादा बढ़े हैं और लोगों की चीहें निकल रही हैं, तो ये अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। जी राजा साहब,
1: आपने शाह साहब की बातें सुनी कि लोगों की जो हैं वो चीखें निकल रही हैं, चीखें तो डेफिनेट निकलेंगी और बहुत सारी निकलेंगी। अब देखें इदरान, जब ये बजट बनाया जाता है तो क्या शहरियों की शिकायत या तजावीज़ को बजट में, बजट के अमल में किस हद तक शामिल की जाता है, जाती हैं या जाती हैं?
2: सब देखा जाए, इस साल मैं एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस चीज़ को देख भी रहा हूँ, एनालाइज भी कर रहा हूँ, इस साल वो सारी परेशानियां लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर गौर से और अमल भी कर रहे हैं, मगर मसाइल ये होते हैं कि जब आप देखें ना कि जब आपने बैठते हैं ना तो फिर आपने हर मसाइल को देखने की कोशिश करनी होती है और आपने डीपली उसके अंदर चीज को देखने की कोशिश करनी होती है। और इस बार मसला ये है कि कमूने जो है ना वो हर तरफ से अपना कोशिश ये करेंगे कि लॉन्ग सेक्टर बजट बने और ऐसा बजट बने कि बंदा 2829 में ना दोबारा उस प्रॉब्लम में ना आए। तो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं और इसीलिए होता है कि जब बजट पेश हो जाता है ना तो आपके पास करीबन 2 हफ्ते होते हैं तो उसके अंदर आप जो स्कूल होते हैं आम इंसान अपनी तरफ से भी उसको एक मिलता है मौका कि वो एक अपना ईमेल पे बेच सकता है अपनी राय और वो राय सारी कमूनों में चली जाती हैं और वो जाती हैं 2-3-4 नंबर तक और वो चली गई हुई हैं। और आज आज डेड लाइन है एप्सिलॉन की, क्या कहते हैं कमून की, और दूसरे बहुत सारे वेस्टर्न कमूनों की, जब वो जाएंगी डेफिनेटली उनको पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे कि कुछ आईडी देंगे लोग, कुछ कंपनियां देंगी, सब देंगे, उसके बाद फिर वो देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन सही है, इसमें से कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। पढ़ते हैं, उनको गौर भी करते हैं, उनको देखते भी हैं और सलाह मशवरा भी करते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं और डेफिनेटली टेबल पे तो बलहरा बात है कि जब टेबल पे बैठते हैं तो बलहरा चीज होती है और उसके अलावा भी आपस में बातचीत होती है। और इस वक्त मसला यही है कि इस साल 2027 के अंदर ये हुआ है कि जब ये नया रिफॉर्म इन रीजन का बनाया था, जब 5 रीजन से 4 रीजन बने थे, तो फिर इनने कुछ जो आपके वो थे ना वो कमूनों के अंदर ले गए हैं, तो इसलिए इस बात ने थोड़ी बहुत क्या कहते हैं फिर वो चीजें भी इनने देखनी है और सारा कुछ सिस्टम देखना है इनने, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला होपफुली बजट बनेंगे और अल्लाह करे कि अच्छे
1: बजट बनेंगे, बनते रहेंगे। तो अब आप दोनों से मेरा बराह रास्त सवाल है, आपको किस बजट में या इस बजट में कौन सी खूबी नजर आती है और कौन सी खामी नजर आती है, ये दोनों से मेरा सवाल है।
0: जी मैं तो ये कहूंगा कि मुझे तो इस बजट में जो मैंने मेरी नजरों से गुजरे हैं, जो मैंने तजिया नगारों से या अपना मैंने अखबारों में या आगे पीछे टीवी पे देखे हैं, अभी खुसूसी तौर पे जो वेस्ट टाइम का जहां मैं एल्बर्सोन में रह रहा हूँ इसका अभी फुली ओपन नहीं हुआ। मसला ये है कि जब माइनस आप जा रहे हैं, जब आपके पास इतना पैसा ही नहीं तो फिर आप कहाँ से पैसा लाएंगे? स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट जो है वो हमें ब्लफ कर रही है, वो कह रही है मेरे पास तो ओवर स्कूल है और मैं दे रही हूँ, लेकिन कहाँ है वो पैसा? वो पैसा क्यों नहीं दे रही जो इन्होंने कम्यूनों से वापस दिया था, जो कम्यूनों का जमा है वो दे ताकि लोगों पे इस बुरे वक्त में लोगों के काम आए। तो ये जो ब्लफिंग कर रही है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट और इससे अवाम, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बहुत ही जरूरी है सियासत के अंदर। सियासत के अंदर ये होता है कि जो लोकल सियासतदान होते हैं वो अपनी गलियों का और अपनी वहां के रिहायशों की जो बजट है वो पहले ही पेश करते हैं। यानी कि अभी आपने अदनान से सवाल किया था, अदनान ने जवाब दिया है कि ये जो अभी जो फौसले जाएंगी ये 27 के अंदर इसके ऊपर बहस होगी और 28 में जाके इस पे कुछ चीजों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो बजट अभी आया है, ये जो बजट अभी ये सामने पेश हुए हैं, ये 25 के हैं, ये पिछले साल के हैं जो इनके इनके सामने आई हुई है कि भाई हमने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, यहाँ पे हमने स्कूल को इतनी मदद देनी है, यहाँ से हमने इतनी चीजों को आगे बढ़ाना है, ये पुरानी बिल्डिंगों कैसे, सड़कें कैसे,
1: ये सारा कुछ जो है पिछले साल के। आपको ले आते हैं क्योंकि आप अपोजिशन की तरफ से है, जो है वो अदनान है, वो हुकूमती जमात से उनका तल्लुक है, तो अगर शाह साहब आपको इस बजट में एक तब्दीली करने का इख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
0: मैं सबसे पहले जो यहाँ के अवाम है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा फैमिली जो है वो गुर्बत की से नीचे रह रही है, मैं सबसे पहले इस बजट में उनके लिए पैसा रखूंगा ताकि वो खुशहाली आए। खुशहाली सिर्फ इस वक्त हो सकती है जब आपकी जेब भरी हुई है तो आप जाते हैं, आप दुकानों से भी चीजें खरीदते हैं, खुराक खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, तो वो पैसा जो है आप अपने कम्यून के अंदर खर्च करते हैं, तो उससे जो है वो सरमाया जो है उसका सर्कल जो है पिया उसका जो होता है वो सर्कल करने लगता है। मैं तो ये करूंगा कि जब तक अवाम के पास पैसा ना होगा, और उसको सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगा, अदनान इस पे बिल्कुल बात कर सकता है कि यहाँ के इस वक्त जो लाए बोली हैं इनके हौसलाए इतने ज्यादा हैं कि आप टैक्स कम पे कर रहे हैं और हौसलाए आपके डबल हैं, तो इससे जो है अवाम ज्यादा पिसकी है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा।
1: अदनान आपको कोई एक तब्दीली करने का अख्तियार मिले तो आप कौन सी तब्दीली करेंगे?
2: सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको दो मीन चीजें हैं जिन पे इनको फोकस देने की जरूरत है। ये है कि ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है ना, जिस तरह स्कूल से लेके स्कूल एजुकेशन को, इन दो चीजों पे इनको इतना कट ऑफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर है इनका और फ्यूचर में इनकी बहुत जरूरत है, तो इन पे गौर करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बच्चों को मसाइल हैं उनके लिए भी इनको थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। दूसरा इनको ये करना चाहिए कि बुजुर्गों पे इनको और करना चाहिए कि बुजुर्गों को हेल्प देने की जरूरत है क्योंकि बुजुर्ग बहुत सारे जो हैं।
1: अगर आपको एक तब्दीली करने का इख्तियार मिले तो आप क्या करेंगे?
2: मैं सबसे पहले जिस चीज पे काम करना चाहता हूँ ना, और जो मेरी मैंने जो इलेक्शन में भी कहा था और सब लोगों को, वो ये है कि ये जो फ्यूचर में इन समझ रहा है इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है बुजुर्गों की, क्योंकि बुजुर्ग जो है ना वो उनकी एक बहुत टफ जिंदगी गुजरी होती है और आगे जो बुजुर्ग हैं वो खाली घोड़े की तरफ नहीं है, वो हमारी नेशनैलिटी के भी आएंगे, तो इनको एक तरफ करने तो इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको फायदा होना है क्योंकि लॉन्ग सेक्टर पे बुजुर्ग ज्यादा होने हैं और कोई ना कोई इनका क्या कहते हैं हल ढूंढना है, तो इस पे पिसपाल से करना सबसे बड़ी स्ट्यूपिड बात है इस वक्त। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने जो अभी तक मेरी इल्म में आया वो यही आया कि 98 से 8 में से कम से कम 70 से लेकर 75 कमूनों तक उसके अंदर किसी ना किसी जगह पे इनकी पिसपाल से जरूर है। ये मुझे समझ नहीं आई कि फवेलिंग में कौन बैठ के इस तरह की पिसपाल से कर रहा है, मगर अब उनका आईडिया
1: चले। अच्छा शाह साहब आपकी तरफ आते हैं। शाह साहब अगर इस मौजूदा बजट में आप हाँ करते हैं तो क्यों, अगर ना करते हैं तो क्यों? जी शाह साहब
0: जी, मैंने पहले ये कहा है कि मैं अग्री करता हूँ अदनान के साथ के बूढ़े और बूढ़ों के साथ जो है ना वो फैमिलीज, जैसे कि अभी आपने देखा था फ्री ग्रोने के जो फॉर्मर है उन्होंने कोपनहेगन के प्लेटफॉर्म पे ये बात की कि 5,000 जो है वो बच्चे जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, इससे स्कूल भी अफेक्टेड होते हैं, इससे नॉर्मल लाइफ भी अफेक्ट होती है, हर एक चीज अफेक्ट होती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं फैमिली को देखा जाए, फैमिली को यहाँ पे आइन की एक बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है राजा साहब, वो ये है कि अगर आपके घर में आप दो बंदे रह रहे हैं, आप कमा रहे हैं, बच्चों का बच्चों वाला घर है, बच्चे सब अंडर 18 है, अगर मियां कमा रहा है और बीवी जो है वो बीमारी पे चली गई है तो उसको कम पैसे मिलेंगे इस वजह से कि उसका मियां कुमार है, और अगर वो दोनों पेंशन पे चले जाते हैं तो फिर एक औरत को जो है वो पेंशन कम मिलेगी और मर्द को ज्यादा मिलेगी, और इस तरीके से ये अफेक्टेड होता है। हालांकि दोनों ने बराबर का टैक्स दिया है, बराबर के हकूक होने चाहिए, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसी वजह से गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है डेनमार्क के अंदर। ये डेनमार्क वो था जिसका तोता पूरी दुनिया में बोलता था और यहाँ पे बहुत हाईलाइट किया जाता था।
1: देखे ना, सियासी पार्टियों के इख्तलाफात की वजह से बजट के आम आवामी मंसूबे जो है वो मुतासर होते हैं, ये अदनान से भी सवाल है।
0: जी मैं जरा इसके ऊपर ये सिर्फ यही कहूंगा क्योंकि हर कोई जो है वो नया आदमी है, जितने पुराने तजर्बाकार लोग थे वो तो हट गए या वो पीछे बैठे हुए, उनकी कौन सुनता है। ये यंगस्टर्स जो है ये सिर्फ अपने
1: इनको तो ज्यादा मसाइल का पता होता है।
0: नहीं जी, यंगस्टर को कोई मसाइल का नहीं पता होता, ये जाते हैं और सो जाते हैं और यहाँ सुबह काम पे चले जाते हैं और अपने अपने मसाइल को ये देखते हैं, इनको इनको कोई पता नहीं कि नेबर में क्या हो रहा है। बिल्कुल हकीकत है, अब इदनान जो है ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच रहा है कि ये खुद फैमिली वाला है और ये खुद यहाँ पैदा हुआ है, इसलिए इसको पता है कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड में किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है।
1: आपका जवाब आ गया शाह साहब। अदनान, आप बताएं कि ये जो सियासी इख्तलाफात आपस में होते हैं ये अवामी मनसूबों को फिर नुकसान नहीं पहुँचता?
2: पहुँचता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पहुंचता है कि अपने मसाइल जो होते हैं वो नहीं, मगर आप देखिए ना इस वक्त जिस तरह अब हम खाली लोकल नहीं कर रहे, हम पूरी सुल्तान की कर रहे हैं, हम देखिए ना तो हमें ये देखना है कि किस चीज की इस वक्त जरूरत है और किस चीज की नहीं है। इस वक्त देखा जाए सबसे ज्यादा जो है ना अपने मसाइल साइड पे करके ये जरूरत है कि हम एक पेज पे आए और इन मसाइलों का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग अपना अपना देखेंगे ना तो हम इस मामले से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि जो सलूशन जिसका शुरू से कहा गया है, हम लोग बेहसों में रहते हैं, हमें कल तक तो मैं कह रहे कि कल तक तो अंदाजा नहीं था हमें ये कैसे ये सूरत हाल जाएगी, मगर अब थोड़ा बहुत हमें क्या कहते हैं अंदाजा होने लग पड़ा है, क्योंकि हमने टाइम तो नहीं मिला क्योंकि हम यार मसूफियत थी दूसरी जगह पे, मगर आज शाम को ही हमें पता चल जाएगा थोड़ा बहुत जब हम इन चीजों को बैठ के देखेंगे अब, क्योंकि अब हमें सारा एनालिस हो गया कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नहीं है, तो वो फिर देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि हम जब पाकिस्तानी हों, तुर्की हों या डैनिश हों, इस वक्त हम बस ये देखें कि हमने किसके लिए कौन सी बेहतरी करनी है और कैसे हमने बेहतरी करनी है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप हैं, हमारे वाले साहब, हमारे पेरेंट्स भी हैं, सब हैं, हमें सबके लिए देखना है कि कौन सी चीज बेहतर है, क्योंकि हमें सबको पता होता है। मैं खुद कहता हूँ कि जब मैं पीछे जाऊँ, एक साल पीछे जाऊँ, टोकरी में मेरे खुद देखता हूँ, जिस जो मर्जी इंसान हो, जितना मर्जी हो जिसके पास, उसकी टोकरी में कम चीज होती है। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि मसाइलों को हल करने की जरूरत है,
1: मसाइलों को हल करना चाहिए। अदनान, मेरा आखिरी सवाल है, टाइम में बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, फिर शाह साहब का पैगाम लेते हैं।
2: मैं अवाम को यही दूंगा कि आप लोग जो फैसला करेंगे आप उस फैसले की कोशिश करना कि आप उसको सपोर्ट कर सके, जिन लोगों
1: कम्यून से क्या तो रखते हैं
2: जी,
1: और साथ साथ कम्यून से क्या तो रखते हैं।
2: मैं बस मैं खुद इसके अंदर हूँ, मुझे पता है कि वो अपनी तरह से हर कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज कर सकें और क्या कहते हैं कि लोगों को सूरत हाल दे सकें, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि आगे ना दी तो कौन सी क्या कहते हैं कौन सी तब्दीली होती है। और जैसे शुरू में हमने कहा था कि कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी के अंदर 33% लोग अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दे दें, तो उससे एक सिग्नल मिल गया, तो लेट्स होप कि बेहतर ही होगा कुछ।
1: शाह साहब, आप अपने मौजूद मेहमान का शुक्रिया भी अदा करें, और आप मेहमान भी हैं मेजबान भी हैं, क्या कहेंगे शाह साहब?
0: मैं अदान की अच्छी अच्छी बातें सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा अच्छा बात करता है और बहुत खुशी है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर और हमें आवाम को जो है वो आगाही देते हैं। देखिए इस वक्त बहुत सारे कानून जो हैं वो लॉ फोर्सेस जो हैं वो हैंडलिंग हो रही है ऑलरेडी, और जो आने वाले सालों में हमारे ऊपर लागू होंगे, हमें बड़ी सोच समझ के इन पे बात करनी चाहिए और हमें इसके ऊपर कोई क्विक एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि मैं जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, जितने भी हमारे फंक्शनल सियासतदान हैं जिनका मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर असर रसूख है या उनके मेंबर्स हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में होता है और दूसरे चार मुल्कों में कि काउंसिल डिबेट जो है, काउंसिल डिबेट होती है कि जो आपके कम्यून्स होती है उसके अंदर महीने में एक दफा जो है कम से कम वो जो है मुख्तलिफ फ्री बिली लोगों को बुलाकर उनकी डिबेट होनी चाहिए ताकि वो आकर जो बजट आने वाले बजट है, आने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर वो राय ले सके। और ये इसलिए जरूरी है कि इससे अवाम की जो प्रॉब्लम्स है उनकी भी आगाही होगी और आगे चल के जो है जो कम्यून्स हैं वो अपने बजट में काफी बचत कर सकती हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एल्बर्स्टोन के अंदर जो चंद साल पहले जो यहाँ पे चीजें होती थी वो अब नजर नहीं आ रही, और जब ये नजर नहीं आ रही तो लोग यहाँ से फुरता करेंगे। अभी भी अदनान जाते जाते बता सकता है कि यहाँ 4,500 आदमी जो फैमिलीज हैं उनकी जरूरत है कि वो एल्बर्स्टोन में आए ताकि यहाँ का टैक्स लेवल जो है वो पूरा हो, और इसी तरीके से ट्रांसटॉप और दूसरी जगह से भी लोग जो है वो फ्लुता कर रहे हैं। लोगों के पास जिनके पास गाड़ियां हैं जहाँ पे आप पार्किंग टिकट लगने शुरू हो गया कि आप यहाँ पे ये करें, तो वो लोग आप मूव कर रहे हैं, वो छोटी छोटी कम्यूनों के अंदर शहर से बाहर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो सिर्फ इसलिए कि वो अपने बजट को जो है वो नॉर्मलाइज कर सके। और ये बड़ी खुशानदा बात है कि अगर आपके पास कारें हैं, दो कारें हैं, एक कार है, तो आप शहर से बाहर रह रहे हैं तो आपका बजट जो है वो काफी हद तक जो है वो आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए आसानी कर सकते हैं, बनिस्बत के आप 11,000-12,000 के किराए के मकान में सिटी के अंदर आप रहे और वहां पे आप की इतनी पे नहीं है। अगर आप 28,000-29,000 टैक्स के बाद आप पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो उसमें 14,000 अगर आप टैक्स मकान का किराया दे रहे हैं तो आपके पास बचत क्या होगी। तो ये चीजें देखती हैं तो आपने अपने पॉकेट को देख रहे हैं। तो मैं तो इस वक्त जो है सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, लेकिन अगली दफा जब हम बात करेंगे तो हम ऐसे लॉ फोर्स को सामने लेके आएंगे कि जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे यंगस्टर जो है इस पे।
1: नाज़रीन, हमारा टाइम जो है बिल्कुल खत्म हो गया था तो हमारी लाइन कट गई। इन दोनों ने बड़ी मुफीद मालूमात दी, बड़ा अच्छा तजर्बा है इनके पास, बड़ी अच्छी ये बात करते हैं दोनों और अच्छी मालूमात देते हैं। ये दोनों बहुत स्टडी करते हैं, ख़ासकर अदनान जो है बहुत चीज़ें करीब से देखता है, एनालाइज करता है, चूँकि तकरीबन ये काफ़ी बजट का खुद भी हिस्सा रहे। तो शाह साहब जो है वो साला साल से इनको 50-60 साल से इनको इस चीज़ का तजर्बा है कि ये बजट और सियासी जमातें क्या करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब आपस में इख्तलाफात हो जाए तो फिर नुकसान जो है अवाम का होता है। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं शहर के अंदर, बार भी नज़र आती हैं। आप किसी भी अवामी इत्मा में जाएं, किसी भी फंक्शन में जाएं, तो आपको लबास का आप देख लें, आप गाड़ियों को देख लें, इसी तरह रहन सहन को तो बंदा किसी के घर के अंदर नहीं देखता, लेकिन आप मार्केटों में जाएं तो देखें आपको शॉपिंग के लिए कोई कैद जो है काउंटर आपको खाली नज़र नहीं आता। ये भी एक सवालिया निशान है। जो थिंक टैंक पीछे बैठे होते हैं वो भी इन चीज़ों पर जो है वो गहरी नज़र रखते हैं। सामने नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजसमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजसमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजसमान सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजसमान, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वजीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिसम पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम